0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Aaj, 1st of October ke din, if I told you, you could make an October wish list, toh kya hota aapki us wish list mein? Jaise mere liye, I wish ki, main jitna bhi cake kha lu, usme koi calories na ho, aur mujhe aadmiyon ko apne emotional needs spoon feed na karne pade. Agar in dono mein se kuch bhi sach ho jaye na, I honestly think I'll have the best October of my life. Ab aapki bari. Agar aapke paas ek October ki wish list ka option hota, aur usme se 5 se kam do cheeze sach ho rahi hoti, toh aapki wish list में क्या होता? अब सोचो इसे और सोचते हुए इतने हॉट लगते हो ना, इट मेक्स माय हार्ट सून डार्लिंग, एंड हिट मी अप विद योर लिस्ट, ओके? और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो, आई वाज गोइंग टू से सितंबर में या अक्टूबर में, आप मुझे ढूंढ सकते हो फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
3: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
4: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
5: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
2: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Listener mein back to back gana sunega.
9: Back to back gana sunega.
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने तो हद कर दी यार. नेशनल हॉलीडे वाले दिन आप ऑफिस जा रहे हो जस्ट बिकॉज यू वांट टू इम्प्रेस योर सीनियर कॉज यू आर क्रशिंग ऑन हिम. माजी जी,
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: खैर, जो भी है आपकी ऐसी सीक्रेट कन्फेशन मेरे पास है उसे सुनने के लिए. नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. सो हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक. एंड व्हाइल यू डू दैट, मेरे साथ लाइन पर है नॉट माई मिस्ट्री कॉलर. इनका नाम है प्रतीक विद अ कन्फेशन. हाय प्रतीक.
3: हाय रशी,
1: व्हाट्स अप?
3: आई एम गुड, हाउ आर यू?
1: आई एम वेरी गुड. आई एम ऑल्सो वेरी क्यूरियस कि आपने जो मुझे बोला कि कॉमेडी सीन का कन्फेशन है, ये तो मैं जानना चाहती हूँ राइट नाउ.
3: माय फ्रेंड हैज सीन रिसेंटली, वी वर मीटिंग लाइक आफ्टर 6-7 मंथ प्रोबेबली. सो वी जस्ट डिसाइडेड टू गो टू बीएससी टू सेलिब्रेट एंड हैव सम ड्रिंक. एंड मतलब आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट मायसेल्फ, आई एम नॉट अ वुमन गाय. तो सीन ऐसा था कि हमारे पास में और दो लड़के, दो लड़कियां थे एडजस्टिंग टू दी डांस फ्लोर एंड दे वर डांसिंग अराउंड द सेम एरिया. तो दो तीन बार ऐसा टक्कर लगा उसका मुझे. केम टू मी लाइक, भाई तेरे पास में डांस करी, एक काम करना, तू थोड़ा कुछ कर देना, एटलीस्ट हमारे पास आ जाएंगे. पागल है क्या? ऐसा थोड़ी होता है. मैं क्या करूँ, मतलब तू मेरे को पकड़ के मारेगा? तेरे को जो करने कर मैं यहाँ से हटता हूँ. देन आफ्टर सम टाइम आई थिंक द अदर गर्ल व्हिच शी वाज शोइंग इंटरेस्ट, उसी के फ्रेंड की मेरे पास में डांस करी.
1: आपने जाके उन बंदियों को बोल दिया कि दिस गाय
3: को बोल दिया.
1: वाओ, ओके.
3: आफ्टर सम टाइम द अदर गर्ल हु आई टोल्ड दिस सीन, शी वाज लाइक लुकिंग एट मी फॉर अ व्हाइल. तो सीन है तो घर की से आई स्टूड अप फ्रॉम माय चेयर और उसकी जो दोस्त थी उसका सैंडल मेरे शू पे, मतलब इसी स्टेप ऑन माय फुट. ठीक है, इतना जोर से तो नहीं, बट शी सॉ इट, आई सॉ इट, द शी सॉ इट. और फिर अपना एक्टिंग
1: चला.
3: मैं बैठ गया उधर था शू पकड़ के. एंड देन मैं ऐसा 10-15 मिनट थोड़ा एक्टिंग किया है. केम अप टू द सीन लाइक, आई रियली फील सॉरी फॉर यू, लाइक इट्स हैपेंड. एंड शी केम टू मी द थर्ड टाइम एंड देन शी सेड आई रियली फील सो सॉरी फॉर यू. एंड लाइक ओके, सो यू वांट टू मेक इट अप टू मी? शी इज लाइक, या व्हाट कैन आई डू? Give me a number, I would like to take you on a date. She looked at me, she went to the washroom. And like, I was confused, you know. Did I say something observed? I've never gone up front and said that to a girl. Part member washroom said, she took my phone and she entered a number. This is the first time this has happened to me.
1: My God.
3: मतलब मैंने तो कुछ ट्रिक खेला है.
1: बाप रे, आपने फाइनली उसका नंबर ले लिया. दैट इज सो क्यूट. इट्स सच अ कॉमेडी सीन. आपको रोशिफाई कर दूं फॉर दिस कन्फेशन? देयर यू गो माय डार्लिंग.
4: बीन रोशिफाइड.
1: कैसा लग रहा है? लेकिन एक बात बताओ, यू आर मोस्ट वेलकम. उस दिन के बाद से क्या आप एक सीरियल लेडी किलर बन गए, या वो एक ऐसे रैंडम वन ऑफ डे था और अभी भी आप एक ऐसे वेरी इंट्रोवर्टेड शाय काइंड ऑफ पर्सन अभी भी हो?
3: I am an introverted guy, but I don't know how. मतलब काफी लोगों ने मुझे ऐसा बोला है. I be a gentleman and then you know women just get attracted to me. I
1: kind of get it. आपसे बात करते करते ना मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि यार काश ये मेरा दोस्त होता. आप में कुछ बात तो है प्रतीक. It was really nice talking to you and hearing your confession. Thank you.
3: Thank you.
1: Okay, baby. Bye. अगर ऐसे ही प्रतीक की तरह you have a confession to make and you are a proud confession maker, अपने नाम के साथ जा रहे हो, hit me up on the gram या Facebook. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. I'll be waiting just for you. And while you do that, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
5: रे भीतर भीतर हैप्पी हैप्पी बालक जगड़ गो.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
0: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
1: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

पैकेजिंग कोई भी हो, कंटेंट सेम होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट पे तो हम फिदा हैं। इफ यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं अपनी बेस्टी और अपने टाइप ऑफ मेन के बारे में बात कर रही हूँ। सो कुछ लोगों का टाइप होता है दैट द गाय शुड बी टॉल, कुछ का टाइप है ही शुड बी रिच, कुछ का टाइप है फ्रेंच बियर्ड होनी चाहिए। बट मेरी बेस्टी और मैं, वी आर अ लिटल मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड अ लॉट मोर सोफिस्टिकेटेड, तो हमें चाहिए, ब्रेस योर सेल्फ फॉर दिस अनअवेलेबल मैन। अगर आप शादीशुदा हैं, वी वॉन्ट यू। अगर आप एक मैसी डिवोर्स के थ्रू जाने हैं, वी वॉन्ट यू। अगर आप कमिटमेंट फोबिक हैं, वी आर ऑब्सेस्ड विद यू। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो प्ले बॉय हैं, किसी के हाथ नहीं आएंगे, ओह माय गॉड, वी वॉन्ट टू चेंज योर डेस्टिनी डार्लिंग। तो पॉइंट ये है, इसीलिए अर्थात हम सिंगल हैं अभी तक। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी एफोरमेंशन्ड इंसान हैं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB। मेरी बेस्टी या मुझ में से डेफो किसी को तो आप पे दिल आ ही जाएगा। लेकिन वो सब, आउच, आई जस्ट गॉट सो एक्साइटेड, आई हर्ट माई सेल्फ विद द माइक। वो सब जद्दोजहद करने के लिए आपको मात्र अपना नंबर जो है मुझे इंस्टा या FB पर भेजना पड़ेगा। एंड फॉर दैट माई हैंडल इज मिर्ची रोशी, एंड यू कैन नॉट हैंडल मी। ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: हम दोनों फॉरेस्ट फार बैक एज आई कुड रिमेम्बर दोस्त थे और बहुत सारे लोगों ने हमें शिप करने की कोशिश की, लेकिन समटाइम्स ही वॉज डेटिंग अदर पीपल, समटाइम्स आई वॉज डेटिंग अदर पीपल, एंड फ्रेंकली हमने कभी एक दूसरे को उस नजर से देखा ही नहीं. एक दिन इट सो हैपेंड, जब हम दोनों सिंगल थे, वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर डिनर और बिन मौसम की बरसात होने लगी तो धीरे हो गया सारा ट्रैफिक. लेकिन लकीली क्योंकि हम दोनों एक ही तरह का म्यूजिक सुनते हैं, हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी पुराने हिंदी गानों की एंड दे वर ऑल अराउंड बारिश, प्यार हुआ इकरार हुआ. एंड सडनली क्योंकि ट्रैफिक इतना धीरे चल रहा था, ही जस्ट टर्न एंड लुक्ड एट मी स्ट्रेट इनटू माय आईज और मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा एंड पुफ, उस एक मोमेंट में हमने दोस्ती वाली वो लाइन क्रॉस कर दी जो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम क्रॉस करेंगे. और मेरा आपसे सवाल ये है कि आई एम श्योर आई एम नॉट द ओनली गर्ल इन द वर्ल्ड जिसके साथ बारिश की वजह से एक नॉर्मल अच्छी प्लेटोनिक फ्रेंडशिप टर्न्ड इनटू समथिंग सिजलिंग हॉट. अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है देन आई वॉन्ट टू हियर योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी. और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So find me on your socials and while you do that, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot. जो भिड़ा

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: नो
2: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर एक रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी नहीं है तो वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है क्या आपको भी ऐसा ही लगता है क्योंकि प्रिया के बॉयफ्रेंड को ऐसा लगता है एंड दैट इज व्हाई ही इज टेलिंग हर दैट शायद उन्हें नेक्स्ट स्टेप इन देयर रिलेशनशिप ले लेना चाहिए टू नो मोर आई कॉल्ड प्रिया लेकिन अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है फील फ्री टू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम की स्पेलिंग ROCHIE फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB सेंड मी योर नंबर एंड योर प्रॉब्लम एंड आई विल कॉल यू लाइक आई कॉल्ड प्रिया हाय प्रिया
2: हेलो
1: तो प्रिया आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है मेरी जान
2: इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम आ रही है
1: क्या हो गया
2: एक्चुअली माय बॉयफ्रेंड वांट्स टू बी सेक्सुअली इंटीमेट ओके सो मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं उस चीज में कंफर्टेबल नहीं हूँ वो उसकी ऐसी थिंकिंग है कि वो चाहता है कि अगर हम हो जाते हैं तो हमारी अटैचमेंट बढ़ जाएगी और हमारा रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाएगा और रिलेशनशिप में ऐसा होना चाहिए वो ऐसा सोचता है बट आई डोंट वॉन्ट इट मेरी थिंकिंग है कि जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ये करना पड़े वी नीड टू इंटीमेट राइट आई मीन
1: तो आप कितने साल के और आपका बॉयफ्रेंड कितने साल का है
2: आई एम 21 और वो 23 है
1: अच्छा सो आप लोग जब मिलते हो अक्सर कहाँ मिलते हो गाड़ी में ड्राइव के लिए जाते हो या एक दूसरे के घर आ जा सकते हो सिचुएशन क्या है
2: नहीं घर में तो नहीं मिलते हैं बाहर ही मिलते हैं या फिर रेस्टोरेंट में या फिर कहीं कैफे में लाइक एनी प्लेसेस पार्क एंड ऑल
1: सो जब वो आपको कहता है दैट वी शुड गेट सेक्सुअली इंटीमेट तो क्या वो सजेस्ट कर रहा है कि आप लोग एक होटल रूम लो या किसी दोस्त के घर जाओ उसके दिमाग में क्या है
2: या होटल या फिर उसका ही घर वो ऐसा एडवाइस करता है कि जब मम्मी पापा उसके घर पे नहीं हो सो वी कैन अच्छा ऐसा
1: सो बिटवीन द टू ऑफ यू आप लोगों ने हैव यू गाइस किस्ड ईच अदर
2: या फर्स्ट टाइम या
1: हाँ सो आप एक बार किस कर चुके हो एक दूसरे को
2: या
1: यार मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है स्वीट हार्ट दैट अगर एक इंसान एक रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं है सेक्सुअल इंटीमेसी के साथ तो वो कम्प्लीटली उसकी चॉइस है और ये मैं रिपीटेडली शो में कहती रहती हूँ करेक्ट क्योंकि ये आपकी बॉडी है अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो और उसकी बात मान के आपने अगर इंटीमेसी इस्टेब्लिश कर भी दी जब आपका वो इंटीमेट फेज खत्म हो जाएगा और आप वापस घर आओगे यू माइट नॉट फील कंफर्टेबल विद द आइडिया राइट क्योंकि इंटीमेसी एक ऐसी चीज है जब तक आप 100% श्योर नहीं हो कि आप एक इंसान के साथ इंटीमेट होना चाहते हो एब्सोल्युटली फील नो प्रेशर इनफैक्ट एज अपोज टू आपका बॉयफ्रेंड आपको समझाए कि रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है अगर दो जने एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो आपको उसे ये कहना चाहिए कि एक रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब सामने वाला पार्टनर आपके ना को ना मान लेता है यू नो
2: ओके
1: सो एंड जो वो कह रहा है इट हैज सम रेजोनेंस इन द सेंस कि हाँ ये सच है दैट जब दो लोग सेक्सुअली एंगेज्ड होते हैं तो उनके बीच में बहुत पैशन होता है बट जो आप कह रहे हो वो भी बिल्कुल सही है कि ये जरूरी नहीं है कि एक रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए आपको एक इंटीमेट सिचुएशन में होना जरूरी है
2: ओके थैंक यू रोशी
1: यू आर वेलकम माय डार्लिंग तो एक बात ना आप हमेशा याद रखना इट इज योर बॉडी ठीक है और जब तक आप 100% कंफर्टेबल नहीं हो बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज मत करना क्योंकि उस समय तो आपको लगेगा चल ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट एक बार आप घर वापस आते हो या आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता है दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी अनडन
2: ओके
1: है ना तो सोच समझ के करना और जब तक आप 100% श्योर नहीं हो डू नॉट इनिशिएट a sexual relationship.
2: Okay, thank you so much, Rashia. मुझे बहुत relaxed feel हो रहा है कि you know I found a solution.
1: You're so welcome, my darling, and I'm always here for you. अगर 7 दिनों के बाद, 7 हफ्तों के बाद, 7 महीनों के बाद you feel like शायद you've changed your mind, but you're not fully sure and you want to talk to someone, I'm right here for you.
2: Thank you so much.
1: I love you so much, my darling. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है फील फ्री टू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना सुनते रहो मिर्ची It's hot.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं RK Jewels चलिए इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
4: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

छोड़ी है तू अक्सर, पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर। टॉप टू बॉटम मार्क्स तुझे दिए मैंने 10 out of 10, क्यों नहीं चाहिए, चल ओके देन। भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल ली तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जा

आपको पता है मेरा बीपी इतना लो है दैट मोस्ट डॉक्टर्स सजेस्ट दैट आई टेक सोडियम की दवाइयां, बट मैं वो नहीं लेती हूँ क्योंकि एंड हियर इज द कूल पार्ट, क्योंकि मेरे डैड जब तक मेरी जिंदगी में टचवुड बहुत लंबे अरसे तक रहे, मेरा बीपी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि उनसे बात करते ही पहले 5 मिनट में मेरा बीपी हाई हो जाता है। इसीलिए एवरी टाइम आई एम गेटिंग इन टू अ सीरियस कॉन्वर्सेशन विद डैड, मुझे पता ही है कि हमारा झगड़ा होगा, तो मैं पहले ही कलर थेरेपी के हिसाब से ब्लू कलर के कपड़े पहन लेती हूँ, क्योंकि ब्लू से होता ये है कि आपका जो गुस्सा है उसका पारा धीरे धीरे चढ़ता है और उतना नहीं चढ़ता है जितना इन एन आइडियल सर्कमस्टांस चढ़ सकता है। तो अगर आपके बॉयफ्रेंड का इम्पैक्ट आपके ऊपर वही है जो मेरे पापा का है, या आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ वही करती है जो मेरे पापा करते हैं, विच इज जस्ट टू ड्राइव मी क्रेजी, देन यू शुड ऑलवेज वेयर ब्लू क्लोथ्स एंड नेवर वेयर लाल कलर के कपड़े, स्पेशली जब आपको पता है कि कलेश होने ही वाला है। एंड टॉकिंग ऑफ कलेश, व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपका झगड़ा हुआ था आपके पार्टनर के साथ? इफ यू टेल मी दैट, देन आई टेल यू माय एक्स की वंडरफुल स्टोरीज। और ये स्वॉप करने के लिए यू जस्ट हैव टू फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट। This is the future, man.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ये बात इटली में सच मानते थे, आई एम ओके विद दैट, आई डोंट रियली केयर. लेकिन हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है, गार्लिक, ठीक है, लहसुन, आई डोंट इवन लाइक दैट पर्टिकुलर, लाइक वट एवर दैट थिंग इज. गार्लिक अपेरेंटली एक्चुअली पुट्स यू इन द मूड फॉर लव. तो मैं ऐसे मतलब ओल्ड इंडियन स्क्रिप्चर्स पढ़ रही थी और उसमें लिखा था कि अगर आप गार्लिक इस्तेमाल करते हैं तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इम्पेटस टू फील द नीड टू बी नॉटी, ठीक है. और मैं ये सोच रही हूँ कि यार अगर सामने वाले बंदे ने मान लो गार्लिक खा लिया, ठीक है, एंड ही इज इन द मूड फॉर नॉटी, ये सब तो सही है, लेकिन अगर वो मेरे पास आया किस करने के लिए और उसके मुंह पे आई कैन स्मेल लहसुन, भाई इट्स अ बिग फैट नो फ्रॉम मी. ये एक ऐसा एफ्रोडीसियाक है जिसकी तरफदारी मैं तो नहीं कर रही हूँ. लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करना ही चाहते हो कि यार मेरा बॉयफ्रेंड डजंट गेट इन द मूड फॉर लव, कुछ करती हूँ उसके लिए, जस्ट फीड हिम आइदर ऐसी दाल मखनी जिसमें बहुत सारा गार्लिक है, या फिर गार्लिक नान, या फिर स्पगेटी विद लॉट्स ऑफ गार्लिक, एंड वट एवर यू डू, इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो जानने में मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ. सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप, बेबी, डू वट एवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची एंड आई विल कैच यू ऑन द अदर साइड.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने तो हद कर दी यार. नेशनल हॉलीडे वाले दिन आप ऑफिस जा रहे हो जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू इम्प्रेस योर सीनियर कॉज यू आर क्रशिंग ऑन हिम. माजी जी,
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: खैर, जो भी है आपकी ऐसी सीक्रेट कन्फेशन, मेरे पास है उसे सुनने के लिए. नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. सो हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाइल यू डू दैट, मेरे साथ लाइन पर है नॉट माई मिस्ट्री कॉलर. इनका नाम है प्रतीक विद अ कन्फेशन. हाय प्रतीक. व्हाट्स अप?
3: आई
1: एम वेरी गुड. आई एम ऑल्सो वेरी क्यूरियस कि आपने जो मुझे बोला कि कॉमेडी सीन का कन्फेशन है, ये तो मैं जानना चाहती हूँ राइट नाउ.
3: माय फ्रेंड हैड सीन रिसेंटली, वी वर मीटिंग लाइक आफ्टर 6-7 मंथ्स प्रोबेबली. सो वी जस्ट डिसाइडेड टू गो टू बीएससी टू सेलिब्रेट एंड समथिंग. एंड मतलब आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट मायसेल्फ, आई एम नॉट अ वुमन गाय. तो सीन ऐसा था कि हमारे पास में और दो लड़के, दो लड़कियां थे एडजस्टिंग टू दी डांस फ्लोर एंड दे वर डांसिंग अराउंड द सेम एरिया. तो दो तीन बार ऐसा टक्कर लगा होता है मुझे. केम टू मी लाइक, भाई तेरे पास में डांस करी, एक काम करना, तू थोड़ा कुछ कर देना, एटलीस्ट हमारे पास आ जाएगी. पागल है क्या? ऐसा थोड़ी होता है. मैं क्या करूँ, मतलब तू मेरे को पकड़ के मारे. जो करने कर मैं यहाँ से हटता हूँ. देन आफ्टर सम टाइम आई थिंक द अदर गर्ल हू शी वाज शोइंग इंटरेस्ट, उसी के साथ ही मेरे पास में डांस कर रहे हैं.
1: आपने जाके उन बंदियों को बोल दिया कि दिस गाय.
3: वाओ.
1: ओके.
3: आफ्टर सम टाइम द अदर गर्ल हु आई टोल्ड दिस सीन, शी वाज लाइक लुकिंग एट मी फॉर अ व्हाइल. सो सीन ऐसा गर्ल की था, आई स्टूड अप फ्रॉम माय चेयर और उसकी जो दोस्त थी उसका सैंडल मेरे शू पे, मतलब इसी स्टेप ऑन माय फुट. ठीक है, इतना जोर से तो नहीं, बट शी सॉ इट, आई सॉ इट, द शी सॉ इट. और फिर अपना एक्टिंग बैठ गया था शूज पकड़ के. एंड देन मैं ऐसा 10-15 मिनट थोड़ा एक्टिंग किया है. केम अप टू द सीरियस, आई रियली फील सॉरी फॉर यू, लाइक इट इट हैपेंड. एंड शी केम टू मी द थर्ड टाइम एंड देन शी सेड आई रियली फील सो सॉरी फॉर यू. एंड लाइक ओके, सो यू वांट टू मेक इट अप टू मी, शी लाइक या व्हाट कैन आई डू, give me a number, I would like to take you on a date. She looked at me, she went to the washroom. I'm like, I was confused, you know. Did I say something obvious? I've never gone up front and said this to a girl. Part member washroom said, she took my phone and she entered a number. And this is the first time this has happened to me.
1: My God.
3: मतलब मैंने तो कुछ ट्रिक खेला है.
1: बाप रे, आपने फाइनली उसका नंबर ले लिया. दैट इज सो क्यूट. इट्स सच अ कॉमेडी सीन. आपको रोशिफाई कर दूं फॉर दिस कन्फेशन? देयर यू गो माय डार्लिंग.
4: रोशिफाइड.
1: कैसा लग रहा है? लेकिन एक बात बताओ, यू आर मोस्ट वेलकम, कि उस दिन के बाद से क्या आप एक सीरियल लेडी किलर बन गए, या वो एक ऐसे रैंडम वन ऑफ डे था और अभी भी आप एक ऐसे वेरी इंट्रोवर्टेड शाय काइंड ऑफ पर्सन अभी भी हो?
3: I am an introverted guy, but I don't know how. मतलब काफी लोगों ने मुझे ऐसा बोला है. I be a gentleman and then you know women just get attracted to me. I don't know how.
1: I kind of get it. आपसे बात करते करते ना मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि यार काश ये मेरा दोस्त होता. आप में कुछ बात तो है प्रतीक. It was really nice talking to you and hearing your confession. Thank you.
3: Thank you.
1: Okay, baby. Bye. अगर ऐसे ही प्रतीक की तरह you have a confession to make and you are a proud confession maker, अपने नाम के साथ जा रहे हो, hit me up on the gram या Facebook. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. I'll be waiting just for you. And while you do that, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: ओ गॉड, वन मोर।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: आई एम सो सॉरी, मुझे शायद आपके साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए था. ये एक ऐसा बहुत ही खूबसूरत मैसेज मुझे जब मैं एक रिलेशनशिप में थी मेरे देन बॉयफ्रेंड ने भेजा था. एंड दैट्स बिकॉज उस दिन दोपहर को हमारी ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी और वो काफ़ी इरिटेटेड था क्योंकि उसका काम पर दिन अच्छा नहीं था. और शायद उसने उसी इरिटेशन में मुझसे बात की एंड ही साउंडेड काफ़ी अनरीजनेबली रूड. और मैंने उस समय उसे कुछ नहीं कहा बिकॉज आई फिगर्ड कि रिएक्ट करना अच्छी चीज़ नहीं है. और कुछ ही घंटों में जब उसने मुझे वो मैसेज लिखकर भेजा था, आई एम रियली सॉरी, आई काइंड ऑफ रियलाइज दैट आई वाज अ लिटिल रूड टू यू. यू नो व्हाट, वो एक छोटा सा सॉरी वेंट अ लॉन्ग वे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसकी बात तो समझ ली बिना उसके कहे कि ही वॉज हैविंग अ बैड डे एट वर्क. बट क्या उसने ये समझा दैट उसने अपनी रूडनेस में कहीं ना कहीं मुझे हर्ट किया है. एंड ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पता है एक रिलेशनशिप में विच गो अ वेरी लॉन्ग वे इन मेकिंग श्योर कि आपका रिलेशनशिप लंबा चले. तो अगर आपने अपने रिलेशनशिप में कभी रिसेंटली अपने पार्टनर से नॉट सो नाइसली बात की है और अब मुझसे बात करते हुए या मेरी बात सुनते हुए आपको लग रहा है कि हाँ यार शायद उसे इतनी रूडली बोलना नहीं चाहिए था, एक सॉरी का मैसेज भेज दो ना प्लीज़. इट विल गो अ रियली लॉन्ग वे इन मेकिंग दैम फील रियली हैप्पी अबाउट द रिलेशनशिप कि कोई ऐसा है जिसे शर्म नहीं आती सॉरी बोलने में और उसकी ईगो इतनी बड़ी नहीं है कि उस रिलेशनशिप को ओवर पार कर दे. ये सॉरी के बाद जो आपके साथ होता है वो आई रियली वॉन्ट टू नो. और वो मुझे बताने के लिए यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या एफ पी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप. एंड जिसके पास लव है ना उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड्स.
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath. On Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap. Bandi ka naam hai RJ Kanika. And it's time for the hottest pop music of the week. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna ho, kisi countdown ki ranking ke bare mein koi sawal, bindaas aake hit me up. Hafte ke top 10 gaano ke countdown mein ek nayi entry hai. Show par hum apna 90s and 2000s ka indie pop classic bajane wale hain. Some special shout outs, all that and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ke countdown ki with Ghana number 10. Sanju Rathod ki awaaz की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रहे गाना. 16 हफ्ते हो गए इसको काउंटडाउन पर. बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद रोमांटिक बैलेड ऑफ द सीजन, राघव कौशिक एंड रेखा भारद्वाज जी की आवाज में. राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन, दिस वन हैज टेकन इंटरनेट बाय स्टॉर्म. गाने का नाम है दरमिया. मुसाफिर कैफे शो से है ये गाना एंड अपेरेंटली इट्स अ लव सॉन्ग ऑफ द सीजन. 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दरमिया, दिस वीक ऑन गाना नंबर. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है RJ Kanika. एंजॉय.
1: नंबर 10.

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, हर्ष का म्यूजिक, गाने का नाम है साड़ी सुन। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। उससे पहले एक नई नवेली एंट्री, KDS 54 एंड रॉन का गाना फीचरिंग श्रेया घोषाल, गाने का नाम है कल्याणी। इस गाने ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 8।
1: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. इन टॉप 10 गानों के बाहर इंडिपेंडेंट म्यूजिक की दुनिया इतनी डाइवर्स, इतनी वास्ट है, ऐसे इतने आर्टिस्ट, इतने गाने हैं जो शायद अभी तक आप तक पहुंचे नहीं है, लेकिन जिस दिन आप इस गाने को सुन लेंगे यू विल बी लाइक ये कहां था अभी तक। फरक का तारे ऐसे एक गाने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तारे उन गानों में से है जो धीरे धीरे लोगों ने डिस्कवर किया, इतना पसंद आया दैट हमारे काउंटडाउन में टॉप 10 पर है। बट आई ट्रूली बिलीव दैट वी लिव इन अ टाइम जहां हम जो भी ढूंढना चाहें हमको सब मिल जाता है। इंटरनेट, AI तो आपको इसके आगे और क्या सर्च करना चाहिए, 10 मोर थिंग्स यू शुड नो अबाउट इट, सब कुछ बता देता है। तो इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में हमारी क्यूरियोसिटी इज अ बिगेस्ट करेंसी। क्यूरियोसिटी टेक्स अस टू प्लेसेस, एंड अगर यू आर वन ऑफ दोज क्यूरियस पीपल जिनको नए आर्टिस्ट, नए गाने डिस्कवर करने हैं, वो गाने जो अभी तक आपके एल्गोरिदम के थ्रू आप तक नहीं पहुंचे, देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड विजिट गाना डिस्कवर। ऑल द न्यू प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट एक साथ क्यूरेटेड फॉर यू, हिंदी के साथ पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं, एंड 10/10 गारंटी लेके कह सकती हूँ व्हेन यू लिसन टू दोस सॉन्ग्स यू विल बी लाइक यार ये गाने अभी तक मुझे किसी ने क्यों नहीं सुनाए। सो फॉर ऑल यू क्यूरियस बेस्टीज, गाना डिस्कवर इज अ प्लेस फॉर यू। नाउ काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो भी उस प्लेलिस्ट में है। गाने का नाम है तारे, रिटन एंड कंपोज्ड बाय फरक, फरक का ही म्यूजिक। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार तारे इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद कृष्णा धंधन्योलीवाला का गाना बूम शाका, पिछले हफ्ते से एक नहीं, दो नहीं, तीन पोजीशन ऊपर जंप मार के बूम शाका इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दोनों गाने बैक टू बैक, फरक का तारे ऑन नंबर 6, बूम शाका ऑन नंबर 5, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 6।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन। 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। आई एम स्टिल नॉट बोर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, अ हरियाणवी पॉप सॉन्ग। आई एम सैट दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram पर जाओ, मेरा handle is @RJKanika. Now September जा रहा है, October आ रहा है, and I'm sure आपने तो notice कर ही लिया that मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने का सबसे पहला signal ना हमको शाम दे देती है। दिन तो वैसे ही निकलता है। Maybe आप college में हो, office में हो, same traffic, same काम, same phone calls. लेकिन जैसे ही शाम होती है ना, हवा बदलने लगती है, रोशनी थोड़ी soft हो जाती है, नई आवाजें, नई तरह की आवाजें, मौसम का मिजाज ही बदल जाता है। एक तरफ हम पूरा दिन रैप कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ we are really excited to start our day. And somehow, यार मुझे पता नहीं क्यों ये शाम का वक्त बड़ा emotional लगता है. Ever since I was a little kid, शाम को खेलने के बाद घर वापस जाना, मतलब sad वाला emotional नहीं, just I am really aware of how I feel in the evenings. So obviously, full feelings वाली playlist भी है मेरे पास for these evenings. And I'm going to play my top pick for you today. गाने का नाम है शाम तन्हा by अग्नि.
2: शाम तन्हा सी लगे।
0: कुछ तो है इस गाने में दैट हर साल ये गाना मुझे और अच्छा लगने लगता है। मोहन कनन ने जिस तरह से इस गाने को गाया है ब्रो, इट्स लाइक कोई रश नहीं है। ही इज नॉट पुशिंग यू टू फील समथिंग, बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फील थिंग्स। @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर प्लीज आके मुझे बताना कि व्हाट डिड दिस सॉन्ग मेक यू फील। मैं तो इतना कुछ शेयर कर देती हूँ, इतनी वल्नरेबल हो जाती हूँ यहाँ पे, बट कुछ खास है इस गाने में। इट विल टेक यू बैक टू समथिंग, सम मेमोरी और एन इवनिंग दैट यू विल ऑलवेज रिमेम्बर। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इट्स फॉर ऑल दोस इवनिंग्स जहाँ पर आपको लगा कि कुछ खास हुआ भी नहीं है, बट स्टिल यू फाइंड दैट स्टिलनेस एंड आप उसे कितनी बार भी जी सकते हो। अग्नि द बैंड का गाना, मोहन कनन एंड अरिजीत की आवाज में। दिस इज शाम तन्हा प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

I actually have no words for how this song makes me feel. What a beautiful composition. That was Sham Tanha by Agni. At RJ Kanek on Instagram par, please aao, mujhe batao aisa kaun sa gaana hai जिसमें शाम आपका मेन कैरेक्टर है. मैं ऑनेस्टली ये गाना अपने हर दोस्त को रेकमेंड करती हूँ. शाम तन्हा बाय अग्नि इज माय रेकमेंडेशन फॉर यू. यू सेंड मी योर्स. गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप चलेगा. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाले गाने की बारी. इट्स अ डबल वैमी बाय बंजारे बिकॉज उनका नया गाना बरसात 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jam hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani hai, bindas aake hit me up. I truly, really believe that gaane share karne se pyar badhta hai. Tabhi toh it's time for what we call हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी.
1: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी.
1: गाने का नाम है तेरा मेरा प्यार, बाय द वन एंड ओनली कुमार सानू. ये गाना 2004 में रिलीज हुआ था एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स अबाउट लव एट फर्स्ट साइट. इसकी मेलोडी में, राइट देयर इन द कॉम्पोजिशन, वो अर्ली 2000s वाली रोमांटिक एनर्जी है, विच इज वेरी इनोसेंट, थोड़ी फिल्मी बट बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड. आई हैव टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू वन ऑफ आवर लिसनर्स आरुष, जो पुणे से हैं. उन्होंने इतनी बार रिक्वेस्ट किया ये गाना. आरुष, दिस वन इज फॉर यू. अकॉर्डिंग टू आरुष, ही इज लुकिंग फॉर लव एंड थोड़ी मुश्किल आ रही है. वो कहते हैं कि यार डेट पे जाने के लिए, बात करने के लिए तो बहुत लोग हैं, बट वो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग नहीं आ रही है. सो ही वॉन्ट्स टू लिसन टू दिस सॉन्ग एंड गो बैक टू दोज सिंपलर टाइम्स, जब लाइफ सिंपल थी और किसी को पसंद करना एक बहुत बड़ी डील होती थी. किसी के फोन के लिए वो पूरा दिन वेट करते थे, उनका नाम स्क्रीन पे देखकर बिना रीजन स्माइल करते थे, फिर रात को सोने से पहले वो सारी कॉन्वर्सेशंस अपने दिमाग में रिप्ले करते थे. आरुष ने मुझे वो नाम बताया, मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट आई ट्रूली फील यू आरुष. दिस सॉन्ग इज लाइक अ टिकट टू सिंपलर टाइम्स, जहाँ बस कॉलेज कैंपस से बस स्टॉप तक जाना, साथ में चलना ही डेट लगती थी. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. रियल लाइफ में आई माइट नॉट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, बट इस गाने में इट वर्क्स आउट. कुमार सानू की आवाज में दिस इज तेरा मेरा प्यार ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

पहला प्यार, पहली नजर वाला कुमार सानू की आवाज, ये इतना इमेजिनेटिव है। आई थिंक फर्स्ट लव का जो मेगा मैजिक है वो इसी में है, दैट उस वक्त किसी को पता ही नहीं है दैट ये मेमोरी आपकी जिंदगी की इतनी बड़ी मेमोरी बन जाएगी। कुमार सानू की आवाज में दैट वाज तेरा मेरा प्यार ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर। आओ 90s एंड 2000s के वो गाने जो आपको आज आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से सिंपल टाइम्स में ले जाते हैं हमारे साथ आके शेयर करो। मैं और अश्का है माय प्रोड्यूसर, हम दोनों आपके रिकमेंडेशंस का बेसब्री से इंतजार करते हैं। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर मी टू टेक यू टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। बाजरा हितेन शर्वी यादव का गाना है, गाने का नाम है बैंगर। चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक बैंगर इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद मिट्टा रोर का शीशा, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले 4 हफ्तों से ये गाना नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है, दिस वीक ऑल्सो ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक, बैंगर ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ये दोनों एक्टर्स ना ऑलरेडी साउथ में बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद हिंदी इंडस्ट्री में वो इतना बड़ा मार्क नहीं बना पाएंगे। पुरानी जीन्स में हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया। और आज मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ ना, वो फिल्म मैं एक्चुअली मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उस फिल्म को देखने के बाद ना, वो कहते हैं हैंगओवर होता है, एक्चुअली मैं इस फिल्म को देखने के बाद ना मेरा मूड ऑफ होता है। तो जब भी ये फिल्म बहुत सारे यू नो चैनल्स पे आती रहती है, आई ट्राई नॉट टू वॉच दिस मास्टरपीस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सदमा। कमल हसन और श्रीदेवी जी ऑलरेडी साउथ के बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन हिंदी फिल्म में दोनों ने एक साथ पहली बार इसी फिल्म से काम किया था। आज इसी फिल्म की बातें होंगी श्रेया के साथ, एंड ऑफकोर्स सदमा के बहुत खूबसूरत गाने। तो बस कहीं भी मत जाना, कम बैक राइट हियर ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गुलशन ग्रोवर तो फिल्म की सिर्फ शूटिंग देखने गए थे, उन्हें क्या पता था कि उन्हें इस फिल्म का इतना इम्पोर्टेंट रोल भी मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और आज बात हो रही है फिल्म सदमा की। एक ऐसी फिल्म जिसका क्लाइमैक्स देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसको मैं ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है मैं देख नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स देख करके ना मेरा मूड एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज खराब रहेगा। हाँ जी, सो सदमा में गुलशन ग्रोवर विलन का रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको कभी इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया था। ये तो बाय एक्सीडेंट था कि उनको ये रोल मिल गया। अब हुआ ये कि अनिल कपूर ऑलरेडी एक कन्नड़ मूवी के लिए शूटिंग कर रहे होते हैं और सदमा की शूटिंग ना वहीं कहीं उनके ही सेट के आसपास होती है। तो अनिल कपूर श्रीदेवी से मिलने चले गए थे वहां पर। जब वहां गए तो भाई फिल्म के जो कैमरामैन थे जिनका नाम था बालू महेंद्र, उन्होंने गुलशन ग्रोवर को देख करके अनिल कपूर से कहा कि अपने दोस्त से पूछो क्या वो इस फिल्म में विलेन का रोल करेगा। और सोचिए, अनिल कपूर ने जैसे ही पूछा, गुलशन ग्रोवर तो उस समय उनके पास खास काम नहीं था, उन्होंने झट से हाँ कह दी, एंड दैट वॉज हाउ ही लैंडेड इन द रोल। पुरानी जीन्स पे सदमा के गाने होंगे और सदमा की बातें विद मी श्रेया। कम बैक राइट हियर।

आप सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं

0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यही फिल्म कमल हसन और श्रीदेवी जी ने पहले तमिल में की थी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। सो ओरिजिनली दिस फिल्म वाज मेड इन तमिल, उसके बाद इसको हिंदी वर्जन में बनाया गया, टेकिंग अगेन द सेम एक्टर्स श्रीदेवी एंड कमल हसन। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा। लेकिन आपको पता है, हिंदी वर्जन बनाते समय श्रीदेवी काफी नाराज थी, और वो भी खुद से। उनको लगा कि तमिल वर्जन में ना वो और कमल हसन बहुत सारे सीन्स को इम्प्रूव कर पा रहे थे बिकॉज दे अंडरस्टूड द लैंग्वेज, लेकिन हिंदी क्योंकि श्रीदेवी की मदर टंग नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी, तो श्रीदेवी सेट के हम बहुत सारे सीन्स को ना इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए। जैसे डायरेक्टर बोलते गए हम बस वही करते गए, लेकिन अगर जैसा डायरेक्टर ने कहा सिर्फ उतना किया तो भी क्या खूबसूरत किया। सदमा रिमेन्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स ऑफ श्रीदेवी जी। मतलब इस फिल्म के बाद ना, अगर आप जब ये फिल्म देख लोगे तो आपको लगेगा कि श्रीदेवी कितनी मंझी हुई कलाकार थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, इस फिल्म की बातें और गाने चलते रहेंगे। सो डोंट यू गो एनीवेयर, कम बैक राइट हियर।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

द डर्टी पिक्चर विद्या बालन की याद है आपको? ये किस पे बनी थी? साउथ की सेंसेशनल एक्ट्रेस विद्या बालन पे। अब ये साउथ की एक्ट्रेस यानी सिल्क स्मिता उस टाइम पे एक्सट्रीमली पॉपुलर थी और क्राउड भर भर के जाता था सिनेमा हॉल में इनकी फिल्में देखने के लिए। तो भाई जब हिंदी फिल्म बना रहे थे डायरेक्टर बालू महेंद्र, तो उनको लगा कि उन्हें अब सिल्क स्मिता को ना हिंदी फिल्मों वालों से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, हिंदी फिल्म ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए। तो ही वांटेड टू शो समथिंग सेंसेशनल बिटवीन द यू नो स्टोरी ऑफ कमल हासन एंड श्रीदेवी जी। सो उन्होंने ना साउथ की इंडस्ट्री की ये फैसिनेटिंग यंग गर्ल सिल्क स्मिता को लेकर के आए। सो इनका तमिल वर्जन वाली जो फिल्म थी उसमें तो बहुत ही अच्छा काम किया, और उसके बाद हिंदी फिल्म में जब वो लेकर के आए, दैट वाज हर इंट्रोडक्शन, सिल्क स्मिता का इंट्रोडक्शन टू हिंदी ऑडियंस। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, वापस सब।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4 ला.

0: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ah, ah, ah, ah. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जब बात हो फिल्म सदमा की तो ना एक जगह चुप हो जाना चाहिए क्योंकि गाना ये आ रहा है। एंड इस गाने से, यानी इस फिल्म के गानों से इलैयाराजा जी ने अपना डेब्यू किया था, और उनके असिस्टेंट पता है कौन थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट वाज नन अदर देन एआर रहमान साहब। इतना खूबसूरत गाना ये सुदास जी ने गाया। कमिंग अवर राइट नेक्स्ट, सुरमई अखियों। ये गाना जो है श्रीदेवी को देख करके कमल हसन गाते हैं, और श्रीदेवी के चेहरे पे इतना इनोसेंस, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये गाना शुरुआत से एंजॉय करो। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: बालू महेंद्र ने जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा था तो उन्होंने बहुत सिंपल सा लिखा था कि कमल हासन श्रीदेवी को बस देख रहे हैं, ऐसी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे इमोशंस के साथ देख रहे हैं कि बस अब तो मत जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, जिसका क्लाइमैक्स ओ गॉड रोंगटे खड़े कर देता है। और इसीलिए ना, जब भी ये फिल्म आती है किसी भी चैनल पे तो मैं देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स ना मुझे 2-3 दिन तक मेरे दिल में एकदम जगह करके रहेगा, एंड यू नो आई विल फील वेरी वेरी सैड। सो बालू महेंद्र ने तो कोशिश की थी कि बस कमल हासन सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहे हैं श्रीदेवी को, उनकी आंखों में है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, और श्रीदेवी चलती जा रही है। लेकिन इट वॉज कमल हासन हू सेड कि नहीं, ऑडियंसेस के लिए ये सिर्फ एक ग्लिम्स, एक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ और होना चाहिए। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन कमल हासन सेड कि मैं इस रोल, इस पूरे सीन को ना इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ। तो जो वो ट्रेन में बैठी हैं श्रीदेवी और कमल हासन उनको उछल उछल के दिखा रहे हैं कि ये शैतानियाँ हम लोग करते थे, ये मस्ती हम लोग करते थे, और श्रीदेवी उनको यू नो कुछ खाने को देती हैं कि अरे भाई लगता है यू नो ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड, इसको कुछ खाने को दे दें, ये सब कमल हासन ने सोचा था। और ये ऐसा सीन निकला जिसकी वजह से ये फिल्म आज तक जानी जाती है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, बस कहीं भी मत जाना।
1: ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान मोहब्बत।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिर से वो टाइम आ गया जब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज अगला गाना इज़ अ कल्ट सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ सदमा की बात हो रही है, तो वो गाना ना हो जो जब भी हम थोड़ा सा डगमगाते हैं या ज़िंदगी से नाराज़ होते हैं, निराश होते हैं, तो ये गाना सबसे पहले जहन में आता है। सुरेश वाडकर की आवाज़ है, इलिया राजा की कॉम्पोजिशन है और गुलजार साहब ने लिखा था ये। यही गाना तमिल में, यानी जब ये फिल्म तमिल में बनी थी, ओरिजिनली तो ये तमिल की फिल्म थी जिसको हिंदी में फिर से बनाया गया था, यही गाना था पुंगात्रु पुथी नाथू, कुछ ऐसे करके, मैं ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला, ए जिंदगी गले लगा ले। कौन लिख सकता था ये गुलजार साहब के अलावा, कि हमने भी तेरे हर गम को गले से लगाया। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

श्रीदेवी की सारी फिल्मों में से सबसे बेहतरीन मानी जाती है सदमा फॉर हर एक्टिंग स्किल्स। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और जैसे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही रोल रोल पे लिखा होता है एक्टर का नाम। एक्चुअली मैं ये रोल पहले करने वाली थी डिम्पल कपाडिया, बट एट दैट टाइम उनके पास ना बल्क में डेट्स नहीं थी इस फिल्म को देने के लिए। दो शी वॉन्टेड टू डू द फिल्म बिकॉज उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, तो उनको ना उस समय सागर के लिए रोप इन किया हुआ था सिप्पी साहब ने, एंड शी कुड नॉट गिव डेट्स फॉर दिस फिल्म। एंड देन केम श्रीदेवी जी, जिन्होंने इस रोल को चार चांद लगा दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ये फिल्म ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है ना, आई अवॉइड सीइंग दिस फिल्म, क्योंकि सदमा ना आपको एक सदमा दे के जाती है। इसका क्लाइमैक्स आपके साथ रहता है फॉर अ कपल ऑफ डेज। यू कीप थिंकिंग अबाउट द फिल्म, यू कीप थिंकिंग अबाउट कमल हसन, यू कीप थिंकिंग अबाउट श्रीदेवी जी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, मैं हूँ श्रेया।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली goes down the ground.
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

तमिल में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी इसका नाम था मुंद्रम पिराई, और लोगों का कहना है कि फ्रेम टू फ्रेम सेम फिल्म उठा करके रखी गई इन हिंदी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सदमा की, जो सबसे पहले तमिल में बनी है, उसके बाद इसको हिंदी में बनाया गया। सो अ लॉट ऑफ पीपल से, अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स ऑल्सो से कि ये ना ये रीमेक नाम की कोई चीज ही नहीं थी इसमें, इसमें एज इट इज फ्रेम टू फ्रेम काम कराया था। और इसमें भाई तमिल वर्जन में भी ऑफकोर्स श्रीदेवी और कमल हसन थे, लेकिन हिंदी में किसी हिंदी फिल्म के लिए दोनों एक साथ पहली बार काम कर रहे थे, एंड दैट वॉज सदमा। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें आज श्रेया के साथ होती रहेंगी। इनकेस आपको मुझे सदमा के बारे में कुछ बताना है, आई एम श्योर अगर आप रेट्रो फैन हैं आपने ये फिल्म देखी होगी, तो डू शेयर योर फीलिंग्स फेसबुक और इंस्टा पे। माई हैंडल इज RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHRUYA श्रेया विद लव।

मूवी के मेकर्स का ऐसा सोचना था कि सदमा फिल्म इतनी चलेगी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ इस फिल्म ने तमिल वर्जन में तो बहुत कमाल किया था, लेकिन जब इसको हिंदी में बनाया जा रहा था ना, तो सबके डाउट्स थे। डाउट्स इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे 1980s में एक तरफ बच्चन साहब की एक्शन फिल्में आ रही थी, दूसरी तरफ काका की रोमांटिक फिल्में आ रही थी, उसके बीच में इतनी इमोशनल फिल्म जिसका इतना डिप्रेसिव एंड हो, सो द मेकर्स थॉट कि भाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं करेगी, व्हिच एक्चुअली हैपेंड। भाई बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा क्राउड उस समय नहीं आया, लेकिन हाँ, इस फिल्म ने कल्ट का स्टेटस लिया। एंड स्पेशली आज के दौर में दिस फिल्म इज अ माइलस्टोन दैट एक्चुअली श्रीदेवी जी एंड कमल हसन अचीव्ड। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी गड्डी में बैठो और हवा बहुत अच्छी चल रही है। आज हाईवे पे जाने से पहले गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे। आज का मेरा हाईवे हेट मैं उन दीवानों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो अपने आप को सबसे बड़ा दीवाना मानते हैं अपने प्यार के लिए और कहते हैं
1: मुझसा नहीं
0: इस अंबर के नीचे। अगर आप ऐसे दीवाने हैं तो ये गाना आज आपको सेलिब्रेट करते हुए। रफी साहब की आवाज, मैं हूँ श्रेया, जाने का टाइम हो गया। विल सी यू टुमारो। इन केस मुझसे कुछ कहना है तो फेसबुक और इंस्टा पे RJ श्रेया विद लव, ये है मेरा हैंडल। Good night.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची के
1: साथ 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट

0: तेरा क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बांटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: été.
1: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
2: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है, उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरणम्।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौरमंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: और सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: गांधी जी के तीन बंदर की कहानी के पीछे क्या गहरा मैसेज छुपा है, आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: गुड मॉर्निंग सिस्टर, कैसी हैं आप?
4: गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे, आप कैसे हैं?
3: बहुत बहुत बढ़िया, और आज का दिन बहुत अच्छा है। आज 2 अक्टूबर है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि दृश्यम के लिए लोग 2 और 3 अक्टूबर को याद करते हैं, क्योंकि वो हमेशा फिल्म में 2 और 3 अक्टूबर के बारे में बात करते हैं। 2 अक्टूबर को नेशनल हॉलीडे होता है, बापू का जन्मदिन होता है। तो 2 अक्टूबर के दिन मुझे कमाल की बातें, मैं ऐसे सोच रहा था, तो सबसे पहले जब हम बापू के बारे में सोचते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में सोचते हैं, तो गांधी जी के तीन बंदर याद आते हैं। तो बहुत सालों पहले मैंने कहानी पढ़ी थी, तो मैं उसको वापस रिविजिट करने गया था। तो कमाल की बात यह है कि बहुत लोगों को जब मैं आसपास पूछ भी रहा था, ये पता नहीं है कि गांधी जी के जो तीन बंदर है वो एक्चुअली उनके एक दोस्त थे, जो जापानी भिक्षु थे वो। उनका नाम मैंने लिखा है यहाँ पे, निशी दात्सु फूजी नाम था उनका, और वो बाद में बहुत अच्छे दोस्त बन गए गांधी जी के। उन्होंने उन्हें गिफ्ट किया था, और उन्होंने जो बंदर जो थे, गांधी जी ने उनके नाम भी रखे थे। तो जो जापान जो संस्कृति है उसमें जो देख नहीं सकता, जो आंखें बंद करता है, उसका नाम है मिजारू, जिसको गांधी जी ने नाम दिया था बापू। और फिर एक है जो अपने कान बंद करके रखता है, वो जापानी संस्कृति में उसको कहते हैं किकजारू, और गांधी जी ने उनको नाम दिया था केतन। और एक है जो अपना मुंह बंद कर रखता है, जिसका नाम है इवजारू, स्पीक नो इवल, और गांधी जी ने उनका नाम दिया था बंदर। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक्चुअली जापान में 4 बंदर हैं। चौथा जो बंदर है उसका नाम है शिजारू, और वो जो है उसके ना कान बंद है, ना आंख बंद है, ना मुंह बंद है। उसको उसके जो दोनों हाथ हैं वो बंधे हुए होते हैं, और वो बेसिकली होता है डू नो इवल। और वो कमाल की बात लगी मैं तो, जब मैं वापस उसको रिविजिट कर रहा था, बहुत खूबसूरत सी बात लगी। इंडिया में जो है वो 3 बंदर आ गए, चौथा बंदर वो जापान में ही रह गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि आज जब सोशल मीडिया का जमाना है, और हम शायद बोलते हैं कि मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ बुरा सुना नहीं, मैंने कुछ बुरा देखा नहीं, लेकिन जो मेरे पास फॉरवर्ड आया और उसको मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, मैंने ये बात नहीं बनाई, मेरे पास आया, मैंने फॉरवर्ड किया। तो जो डू नो इविल वाला है, ये इसको हम कैसे सीख सकते हैं, इसके बारे में क्या कर सकते हैं?
4: एक्चुअली मुझे लगता है 4 बंदर के साथ एक और ऐड कर देना चाहिए।
3: अच्छा।
4: तो ये 4 अपने आप ही खत्म हो जाएंगे
3: जी।
4: और वो पहला बंदर है थिंक नो इविल।
3: अरे वाह, क्या बात, थिंक नो इविल।
4: क्योंकि शुरुआत सोच से होती है, फिर उसके बाद ये दूसरी जो कर्मेंद्रिया है, चाहे देखना है, बोलना है, सुनना है, और फिर करना है। तो अगर वो थॉट लेवल पर अगर कुछ आ जाता है
3: जी,
4: तो नेचुरली फिर आपकी कर्मेंद्रियों में चंचलता आ जाएंगे, वो कुछ ना कुछ गलत होगा, एंड देन इट विल हैपन इन द एक्शन आल्सो।
3: वेरी नाइस।
4: बाकी जो बात आप पूछ रहे हैं कि भाई मैंने नहीं लिखा, मैंने सिर्फ भेजा, लेकिन वो भी कर्म है।
3: बिल्कुल।
4: कंटेंट जो हम क्रिएट करते हैं, कंटेंट जो हम कंज्यूम करते हैं, और कंटेंट जो हम शेयर करते हैं, तीनों की हमारी रिस्पांसिबिलिटी होती है। क्योंकि फिर भी हमने उनको शेयर किया और किसी ने वो कंज्यूम किया, तो मेजर तो उन्हों की रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन शेयर करने वाले की भी रिस्पांसिबिलिटी है। आप अगर किसी के साथ अच्छा शेयर करते हैं, वो इंस्पायर्ड फील करते हैं, और उस इंस्पिरेशन के द्वारा कुछ अच्छा करते हैं, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो आपको दुआ देगा, वो आपको सटल रूप में कहेगा इन्होंने मुझे राइट समय पर वो बोला, वो भेजा जिसकी मुझे जरूरत थी। एंड इन द सेम मैनर, इफ यू शेयर समथिंग जो किसी की सोल पावर घटाता है, किसी को डिसएम्पावर करता है, तो वो भी कर्मा बनता है।
3: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: भारतवर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस घोलती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा माँ का धरती पर

राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया तो राजा के 60,000 पुत्रों ने आश्रम में धावा बोल दिया। तब कपिल मुनि ने क्रोध में उन राजपुत्रों को भस्म कर दिया। इन राजपुत्रों की मुक्ति का एकमात्र उपाय था कि पुण्य सलिला गंगा मैया धरती पर उतरे और श्रापग्रस्त सभी राजपुत्रों को उनका दिव्य स्पर्श मिले।

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूपी चरण

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बिना पूरी बात जाने अपनी ओपिनियन देना क्यों अवॉइड करना चाहिए, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मैं ना आज क्योंकि 2 अक्टूबर है और गांधी जी का जन्मदिन है, तो मैं हिस्ट्री में बहुत शौक है, तो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि 1915 जनवरी में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे, 20 साल बाद, आई थिंक उनकी 45 साल की उम्र थी, और वो बहुत कुछ अकम्प्लिश करके आए थे साउथ अफ्रीका में, बहुत काम करके नाम बना के आए थे। उनके जो पॉलिटिकल लीडर थे यहाँ पर, जिनको वो गुरु मानते थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले शायद। उन्होंने उन्हें एक बहुत अच्छी सलाह दी थी, उन्होंने कहा था कि 1 साल तक तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें पूरा भारत भ्रमण करना है, घूमना है, और किसी भी मुद्दे पे ना कुछ बोलना है और ना कुछ सुनना है, तुम्हारी राय नहीं चाहिए मुझे, तुम सिर्फ घूमो और चीजें देखते रहो। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, और कई बार मैं ये अपने साथ भी करता हूँ, और कभी कभी ये राय शेयर भी करता हूँ। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब तक आप चीजों के बारे में जानते नहीं है, आप अपनी ओपिनियन देना एक समय के लिए थोड़ा आप रोक लें, क्योंकि तब वरना आप सीखेंगे नहीं। आपको लगता है कि जो मैं सीख के आया हूँ वही सही है, लेकिन कई बार देखता हूँ मैं कि बिना कुछ जाने या बिना उस इशू के अंदर घुसे, बहुत बार लोग सिर्फ अपना एक्सपीरियंस यूज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, घरों में भी होता है, इंडस्ट्रीज में भी होता है। तो चुप रहकर सुनना और सच में सुनना, इसमें बहुत फर्क है। और ये जो कला है ये बहुत मुश्किल से आता है, राइट? ये कला में निपुण कैसे हो, इसको कैसे आप पा सकते हैं?
4: दे से दैट इट टेक्स 2 years to learn how to speak and 60 years to learn how to stay quiet. 2 साल लगते हैं आपको सीखने में कि कैसे बोलना है
3: जी।
4: लेकिन 60 से भी ज्यादा साल लग जाते हैं ये सीखने में कि कब चुप रहना है। तो चुप रहना, मौन में रहना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। बोलना कोई शक्ति नहीं है, सुनना शक्ति है। बोलना जरूरी है, लेकिन बोल भी ऐसे होने चाहिए जो जिसको कहें वरदानी बोले, मतलब किसी के बेनिफिट के लिए है
3: जी।
4: और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम पूछता भी कोई नहीं है, लेकिन तुरंत अपना ओपिनियन
3: आतुर रहते हैं, हम अपना ओपिनियन,
4: अपनी राय, अपनी बात कहने के लिए आतुर रहते हैं टू अदर पीपल,
3: खुद के लिए कभी नहीं।
4: अगर आप किसी प्रॉब्लम में है आप कई बार नोट करना, दूसरे को राय देने में हम 30 सेकंड भी नहीं लगाते, आपको ऐसा करना चाहिए, जबकि हमें उनके सर्कमस्टांस का नहीं पता,
3: नहीं पता,
4: हमें उनके चैलेंजेस का नहीं पता, हमें उनकी चॉइसेस का भी नहीं पता।
3: सही बात है,
4: उन्होंने हमसे राय मांगी भी नहीं होती तो भी हमें 30 सेकंड लगता है। हमें अपने सर्कमस्टांसेस पता है, चैलेंजेस पता है, ऑप्शंस पता है, तो भी हम अपने जीवन का निर्णय नहीं ले पाते, हम दूसरों के पास जाते हैं पूछने के लिए। सो इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारा खुद के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता हो, तभी राय दें जब कोई मांगे, तभी कोई डिसीजन दे जब कोई मांगे, और उस समय भी बहुत जरूरी होता है ये कहना कि ये मेरे हिसाब से है।
3: आप अपना देखो,
4: क्योंकि उनकी चॉइसेस, उनकी लाइफ, उनके चैलेंजेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उनकी कैपेसिटी।
3: हाँ बिल्कुल,
4: आज अगर मैं किसी को कोई राय दे रही हूँ वो मेरी कैपेसिटी से होती है, जरूरी नहीं है वो उनकी भी कैपेसिटी।
3: सही कह रही हूँ,
4: आप किसी को कहें 5 किलोमीटर रोज दौड़ना चाहिए
3: लेकिन उठ ही नहीं सकता,
4: वो बिल्कुल अच्छी राय है, लेकिन अगर उसने अपने जीवन में कभी 1 किलोमीटर भी नहीं भागा है,
3: उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया।
4: मुश्किल हो सकता है कि वो फेंट हो जाए, उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस निकल कर आए
3: जी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: मौन व्रत क्या होता है और इसका हमारी इनर पीस में क्या रोल है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कुछ दिनों पहले ना जैनियों में एक संवत्सरी और पर्युषण का एक पर्व होता है, वो हो रहा था, और उनमें मैंने सीखा है कि मौन व्रत बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, जहाँ वो सिर्फ अपने साथ बैठते हैं, बात नहीं करते। बचपन में मेरी माँ और पापा हमेशा बोलते थे कि बैठा करो, हमसे बैठा ही नहीं जाता था, और हम कभी कभी इशारों से कम्युनिकेट कर देते थे, कभी कुछ लिख के बता देते थे, तो और मम्मी पापा बोलते थे कि ये भी कम्युनिकेशन है, ये भी नहीं करना। और जब मैं गांधी जी के बारे में पढ़ रहा था तो वो भी मौन व्रत आई थिंक हर सोमवार या ऐसा कुछ करते थे। तो मौन जो है वो बहुत फायदे का है, और भारतीय संस्कृति में बहुत सालों से है। ऋषि मुनि केव्स में जाते थे, वहां पे सालों तक, बरसों तक किसी से बात नहीं करते थे, मौन व्रत रखते थे, लेकिन धीरे धीरे शायद उसका जो चलन है, उसके बारे में जो जानकारी है वो कम हो गई है। मौन व्रत से दरअसल होता क्या है?
4: शक्ति बचती है। आप जब बोलते हैं तो उसमें बहुत शक्ति लगती है, और उससे भी ज्यादा शक्ति वेस्ट होती है गलत बोलने में।
3: हाँ।
4: तो जब हम मौन व्रत रखते हैं तो हमारी विल पावर डेवलप होती है।
3: हाँ।
4: कि हम एक दिन के लिए बिना बोले रह सकते हैं।
3: हाँ।
4: देखो, दो प्रकार का मौन है, एक मुख का मौन।
3: हाँ।
4: और दूसरा मन का मौन।
3: जी।
4: मुख का मौन भी बहुत जरूरी होता है। आप, हम सभी अनुभवी हैं कि कभी कभी हमें जैसे अगर गुस्सा भी आ गया और हमने किसी को कुछ कह भी दिया, आप कितनी देर डांटेंगे किसी को? एक मिनट? ज्यादा तो कितना, एक मिनट आप कहेंगे मैंने एक मिनट बोला। आप कभी उस व्यक्ति से पूछना कि आप ये बात कितनी देर में छोड़ेंगे?
3: कुछ साल भी लग जाते हैं कभी तो।
4: कुछ साल, कभी कभी तो कई लोग कहते हैं मैं जीवन भर नहीं भूल सकता, उन्होंने सबके सामने मुझे ऐसा बोला।
3: जी।
4: तो आपके वन मिनट की इन्वेस्टमेंट थी वो, और रिटर्न आप देखो लाइफ टाइम का।
3: सही बात।
4: नेगेटिव एनर्जी, मतलब एक मिनट भी अगर आपने गलत बोला, आप कहेंगे एक ही मिनट तो बोला, पर वो आत्मा कमजोर थी, उसने कहा मैं जीवन भर नहीं वो बात भूलूंगा। तो जीवन भर जब भी वो आपके बारे में सोचेंगे या किसी और से आपके बारे में बोलेंगे तो वो कौन सी एनर्जी आपको भेजेंगे?
3: खराब, नेगेटिव।
4: क्यों? क्योंकि आपका किसके ऊपर संयम नहीं था? बोल के ऊपर। बोलना गलत नहीं है, कम्युनिकेशन ठीक है, लेकिन आपका उसके ऊपर संयम नहीं था, जो ग्रेस और डिग्निटी से या रिस्पेक्ट से बोलना था नहीं बोला। तो ये प्रैक्टिस कि एक दिन हम मौन में रह सकें, ये हमारे को डिसिप्लिन्ड बनाती है कि फिर जब हम बोलें तो हम सही बोलें। सिर्फ बोलना काफी नहीं है, लेकिन सही बोलें, सम्मान से बोलें, सभ्यता से बोलें। और एक है मुख का मौन, दूसरा है मन का मौन। आपने मुख का तो रख लिया। मन का मौन का मतलब ये नहीं है कि मन में संकल्प नहीं आएगा, मन तो एक फैक्ट्री की तरह है, उसने सोचना ही है, लेकिन मन का मौन है किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचना, किसी की कमी के बारे में चिंतन नहीं करना, किसी के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना। ये सारी चीजें आपकी शक्ति को खत्म कर रही है ना, डिप्लीट कर रही है। दोनों ही प्रकार का मौन, चाहे मुख का है मन का है,
3: बहुत बढ़िया।
4: अब मुख का मौन आप सिर्फ कभी कभी रख सकते हैं। आप वर्क प्लेस पर हैं, घर पर हैं। आई रिमेम्बर हमारे एक बहुत सीनियर अकाउंटेंट हैं जो काफी सारा, तो उन्होंने जो हमारी सीनियर दादी जी थी उनको जाकर पूछा कि मुझे लगता है मैं दिन हफ्ते में एक बारी पूरे दिन का मौन रखूं, पर उन्होंने उनको मना किया। उन्होंने कहा आप जिस सीट पर बैठे हैं, हमारे 8,000-9,000 सेंटर्स हैं, वो बहनें जब अकाउंट्स में कहीं अटकती हैं तो तुरंत आपको कॉल करती हैं, और अगर तुरंत उनको रिस्पांस नहीं मिलता तो 24 घंटे उनका वेस्ट चलेगा।
3: सही बात।
4: क्योंकि यू आर एट दैट रिस्पॉन्सिबल पोजिशन। तो कभी कभी आप शायद मुख का मौन नहीं रख पाते, वो आपकी पोजिशन आपको अलाउ नहीं करती है, पर दादी जी ने जो उनको कहा, आपको रोज मन का मौन रखना है।
3: क्या बात, बहुत बढ़िया।
4: मैंने रोज अगर आपने मन का मौन रखा, कोई वेस्ट नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, कोई किसी के बारे में गलत सोचना नहीं, तो इट इज एज गुड एज कीपिंग द मौन। शक्ति को बचाना है।
3: क्या बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Edge Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: मुख का मौन और मन का मौन, इन दोनों में क्या फर्क है? आइए इस डिफरेंस को समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर, हम मौन के बारे में बात कर रहे थे कुछ देर पहले, और आपने कहा था कि एक होता है मुख का मौन और दूसरा होता है मन का मौन, और बहुत अच्छी बात कही हमने। मुझे याद है बचपन में जब हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि मौन व्रत रखो, तो हम तो बच्चे थे, हमें एक जगह बैठने में दिक्कत होती थी। शायद वो हमें ये सोच के बोलते थे कुछ देर तो शांति रहेगी घर में। लेकिन एक चीज़ है, वो हमेशा कहते थे कि लिख के भी कुछ मत बताओ, क्योंकि वो भी एक तरह से आप फिर क्या बिजी हो रहे हैं, व्यस्त हो रहे हैं, आपने एक्चुअली मौन नहीं रखा। तो मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि जब आप मौन व्रत रखते हैं तो आपने संकल्प किया कि मैं एक जगह शांति में बैठूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तो शायद जैसे आपने कहा कि अच्छा बोलना भी आप सीख रहे हैं, बुरा बोलना कम हो रहा है, और आपने नई बात बताई मन का मौन, वो बहुत अच्छी बात है कि लोगों के बारे में अच्छा सोचो। लेकिन जब हम लिख के किसी को बता रहे हैं क्योंकि कोई काम है, या इशारे से लोगों को बता रहे हैं, ये भी कई बार बोला जाता है कि ये नहीं करना, ऐसा क्यों होता है?
5: आप उस समय केवल अपनी एनर्जी को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस समय आपने मौन का सोचा है और आप और ही लिख करके या इशारों से बातें करने की कोशिश करते हैं, तो आप और ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे होते हैं। इससे तो अगर आपको किसी को कोई जरूरी बात कहनी है तो आप कह दें। आप समझें, ये कोई ऐसे रिजिडिटी नहीं है कि आपने कुछ बोला तो नुकसान हो जाएगा। हम लोग भी अपने रोज के दिन में मॉर्निंग 4 से 8 मौन में रहते हैं।
4: अच्छा,
5: जो भी वाचा में आना है दैट इज आफ्टर 8, तो 4 to 8 का टाइम वो आपके लिए हो जाता है। आप औरों के साथ कम्युनिकेट कम कर रहे हैं, आप अंतर्मुखी हैं, आप अपने साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो वो पीरियड मौन का जो होता है एक एनर्जी को सेव करना और हायर बींग से कनेक्ट करके अपनी एनर्जी को बढ़ाना। तो सारी वो चीजें जो आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रही होती हैं, हम उसको कट करते जाते हैं, सो दैट व्हेन यू कम इन द वर्ल्ड। देखो, अगर आप डीप साइलेंस में जाकर के बोलेंगे तो आपके शब्दों में बहुत पावर होंगे,
4: क्योंकि सोच समझ के आप बोलेंगे।
5: आप जो चीज 20 लाइनें लगती हैं वो आप 4 लाइनों में आपका काम हो जाएगा।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: शब्दों में बहुत ताकत होती है, तो उनका सही इस्तेमाल क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: परमात्मा का एक बहुत सुंदर लाइन है जो मुझे हमेशा याद रहता है कि अगर लंबा समय आपके बोल भी सुखदायी रहे हैं, माना काफी समय, काफी महीने, काफी साल आपने अपने बोल से किसी को दुख नहीं दिया, लंबा समय अगर आपके बोल सुखदायी रहे हैं तो वो बोल वरदानी बन जाएंगे।
2: अरे वाह, क्या बात।
3: विच मीन्स फिर अगर आप किसी को कहेंगे ना, इतनी पावर उस बोल के अंदर होगी कि सामने वाला उस बोल को सत्य समझ लेगा।
2: अरे वाह।
3: और उसको एफर्मेशन की तरह ले लेगा कि उन्होंने कहा था ऐसा,
2: ये तो करना है,
3: और वो उस चीज को सिद्ध कर लेगा।
2: अरे वाह।
3: लेकिन उनको लगेगा कि ये आपने बोला था इसलिए सिद्ध हुआ, बट आपके बोल में इतनी ताकत थी कि उन्होंने उसको एक एफर्मेशन की तरह ले लिया।
2: शायद इसीलिए पुराने जमाने में बोलते थे मिरेकल्स हो गए।
3: वो क्यों होते थे? क्योंकि आप जाते थे साधु सन्यासियों के पास वरदान लेने के लिए। वो इतनी मौन की प्रैक्टिस करते हैं, किसी के लिए गलत सोचते नहीं हैं, गलत बोलते नहीं हैं, दिन में कम बोलते हैं, तो उनके शब्दों के अंदर बहुत पावर है, मन के अंदर भी बहुत पावर है। फिर वो एक लाइन आपको बोलते हैं, वो होती नॉर्मल सी लाइन है, वो इतना ही कहेंगे हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, आपका ये काम हो जाएगा। आप वापस आकर के कहते हैं उन्होंने कहा ना ये काम हो जाएगा, एंड यू स्टार्ट रीअफर्मिंग इट 30 times 50 times इन अ डे। अभी तबीयत ठीक हो जाएगी, अभी बिजनेस ठीक हो जाएगा, अभी ये ठीक हो जाएगा। आपके ठीक हो जाएगा कहने से, संकल्प से सिद्धि हो जाती है।
2: क्या बात।
3: पर वो संकल्प आप बार बार कर पाए, उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट उनका था, क्योंकि उनके बोल में इतनी ताकत थी। पर वो बोल में ताकत क्यों आई? क्योंकि उन्होंने कोई भी बोल दुखदाई वाले नहीं बोले थे, और मनसा में भी किसी के प्रति कुछ नेगेटिविटी नहीं थी। देन यू आर एबल टू मैनिफेस्ट व्हाट एवर यू वांट इन द वर्ल्ड, और तब आप कहते हैं इनके साथ बहुत मिरेकल्स होते हैं।
2: शायद इसीलिए हम बोलना कहते हैं कि बोलो मत, मौन का मत, अगर ना बोले बेहतर है।
3: एक्चुअली में तो बोल तो वही होना चाहिए जो सुख दे, जैसे ग्रेटिट्यूड का है, किसी को ऊपर उठाने का है, अप्रिशिएट करने का है, मतलब ऐसा बोल बोलने में हर्जा नहीं है। पर कोई बोल जो किसी को दुख दे रहा है, नीचे गिरा रहा है, आप शिक्षा भी दे, कोई शिक्षा देने में हर्जा नहीं है, लेकिन शिक्षा भी क्षमा की भावना से दे, कल्याण की भावना से दे, रिजेक्शन की भावना से नहीं दे। बोल में बहुत पावर है, वर्ड्स हैव पावर।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
8: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
5: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155.
9: The mortgage industry has changed over the years, par hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
10: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
9: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
10: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
12: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, इज़िलिन।
13: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
14: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
15: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: उपवास को आत्म शुद्धि से क्यों जोड़ा जाता है, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
7: सिस्टर, एक बहुत बड़ी चीज जो गांधी जी से बहुत जोड़ी जाती है वो है उपवास में बहुत विश्वास करते थे, फास्टिंग में, और वो कई बार वो प्रोटेस्ट का भी उनका जरिया रहा और कई बार वो आत्मशुद्धि के लिए भी करते थे। और मैं देखता हूँ बहुत सारे रिलीजन जो होते हैं, बहुत सारे सेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज होते हैं, उसमें भी इसका बहुत महत्व होता है। तो जिस तरह से मौन व्रत होता है जो आपके शायद मानसिक स्थिति के लिए, और आप सही बोलें, उपवास जो है वो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसको आत्मशुद्धि से क्यों जोड़ा जाता है?
3: विल पावर बढ़ती है ना। देखो, कोई भी चीज में जब आप रेस्ट्रेंट लेकर के आते हैं, आखिर आप जिस समय पर फास्टिंग भी करते हैं तो जिनको आदत नहीं होती उनको कितना मुश्किल लगता है। उनका मन क्या कहता है? मन है ना, आपका मन चंचल होता है, बस एक खा लूं। फास्टिंग में क्या वो फिर कई बार दिखाते भी हैं कि पहले थे निर्जला भी रखा, फिर कहा मैं सिर्फ पानी पी लूं, मैं फिर सिर्फ एक फल खा लूं, फिर मैं इस प्रकार का, तो अभी ऐसा हो गया वो फास्टिंग रही नहीं है,
7: वो ज्यादा खाते हैं।
3: बना आपने इतना कंफर्ट कर लिया, विच इज ठीक है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन ये रेस्ट्रेंट की बात है, विल पावर डेवलप करने की बात है। अगर आप अपने को खाने में रोक सकते हैं तो आप बहुत सारे गलत में रोक सकते हैं। आप पावर डेवलप कर रहे हैं, ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये सिर्फ बॉडी के क्लेंजिंग की बात नहीं है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन आप एक अपनी कर्मेंद्री को कंट्रोल कर रहे हैं। और पहले दूसरी बारी में आप देखेंगे कि आपको बहुत मेहनत लगेंगी,
7: बिल्कुल,
3: फिर धीरे धीरे आपके लिए नेचुरल
7: हो
3: जाएगा।
7: हाँ।
3: आप व्रत वाले दिन ये नहीं सोचेंगे कि मुझे खाना है या मेरी दिल कर रही है या मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ा या मैं बार बार घड़ी देख रहा था, क्यों? आपने उस चीज की पावर डेवलप कर ली। अभी छोटी छोटी चीजों में क्योंकि विल पावर नहीं होती तो हम बहुत सारे नियम मर्यादाएं तोड़ते हैं। सिग्नल की बात है, आप सुबह का समय है, रेड सिग्नल है,
7: कोई नहीं देख रहा,
3: खाली सड़क है, आप रुकेंगे तो लोग समझेंगे कि शायद
7: बेवकूफ है, क्या कर रहा है,
3: लेकिन वो कोई सिग्नल तोड़ने या रुकने की बात नहीं है। लेकिन जब हम ये सारे सिस्टम है या नियम है उनको तोड़ते हैं तो अपनी विल पावर को कम करते हैं। और जब हम ये डिसिप्लिन्स रखते हैं, चाहे मौन का आपने रखा या फास्टिंग का रखा, तो हम अपनी विल पावर को डेवलप कर पाते हैं। क्योंकि आप अगर जितना अपने जीवन में नियमों से चलेंगे, कर्म है ना, कर्म से फल मिलता है, कर्म से तकदीर बनती है। तो आपके घर में भी कुछ नियम होंगे, आपके वर्क प्लेस पे भी कुछ नियम होंगे, सोसाइटी के भी कुछ नियम होंगे। जितनी आपकी विल पावर होगी आपके लिए उतना नियमों पर चलना बहुत इजी होगा, whether somebody is looking or not looking। और जितना आपका कर्म राइट होगा, श्रेष्ठ होगा, ऑटोमेटिकली आपकी तकदीर श्रेष्ठ होगी। सो दीज प्रैक्टिसेस डेवलप योर विल पावर, इनर पावर, इसके लिए ये की जाती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
16: वॉरिड अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
17: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
16: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
12: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
14: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
18: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
14: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
10: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
19: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 7323666777।
20: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
21: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
20: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
21: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
20: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
22: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
23: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
22: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर नरेश सिंघवी लिखते हैं कि मेरे घर में सिर्फ चार ही लोग रहते हैं और हमेशा झगड़ा होता रहता है, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे घर में शांति बनी रहे?
3: झगड़े का कारण ईगो होती है।
2: हाँ,
3: ईगो यहाँ पर जो हम कहना चाहते हैं, ईगो में क्या होता है, मैं राइट हूँ आप रॉन्ग है। तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं
2: जी,
3: कई कई घरों में आप देखेंगे बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट का कारण ही ये है कि आप ये नहीं समझते कि दो जने अलग अलग हैं। तो मैं भी सही हूँ, वो भी सही है, दोनों अपने पर्सपेक्टिव से राइट है। फिर हम वो कर सकते हैं जो हमें ठीक लगता है। जरूरी नहीं है कि हम वो करें जो उनको ठीक लगता है, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट देना, सुनना, आर्ग्यूमेंट की जगह आपस में बैठ करके डिस्कशन करना, वो जरूरी है। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, कोई दो कहता है, हम चार कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्रोध में हमेशा एक अगर अपसेट है तो दूसरे को शांत होना बहुत जरूरी है। हम कई बार कहते भी ये हैं, मैं बिल्कुल ठीक था, उसने ऐसा किया ना तो मुझे भी गुस्सा आ गया।
2: हाँ, प्रोवोक कर दिया उसने मुझे।
3: उसने प्रोवोक किया, लेकिन वो वही ट्रिगर कर सकता है जो आपके अंदर
2: है।
3: वो ट्रिगर तो कर सकता है। अब वो गुस्सा कर रहा था, नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहा था, आपके पास चॉइस थी। आप प्रोवोक होकर के वापस गुस्सा कर सकते थे, या आप चूज कर सकते थे कि ऑलरेडी एक अगर अपसेट है, इधर अगर हम शांत रहते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, गलत नहीं रिएक्ट करते हैं, सामने वाला थोड़ा समय तक अपसेट रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे धीरे धीरे वो भी शांत हो जाता है। वाइब्रेशन इधर खड़े होकर के आप शांति का वाइब्रेशन भी रेडिएट कर सकते हैं।
2: सिस्टर, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक आदमी ट्राई करे कि मैं शांत रहूंगी, आदमी औरत जो भी है, उस बात पे भड़क जाते हैं कि तुम्हें कुछ बोलने को नहीं है, मैं कब से बोल रही हूँ, कब से बोल रहा हूँ, तुम शांत हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, तो ऐसे सिचुएशन में फिर भी शांत बने रहे?
3: जब कोई हर्ट होता है ना तो उसको ये अच्छा लगता है कि सामने वाला भी हर्ट है।
2: मना, मुझे ही दर्द क्यों है, तुम्हें भी होना चाहिए।
3: वो दर्द देना भी चाहता है ना, हर्ट पीपल हर्ट पीपल,
2: राइट।
3: और फिर उसको अच्छा भी उसी में लगता है कि जब सामने वाला, कई बार आप देखें ईगो सेटिस्फाई हो जाती है।
2: हाँ।
3: कि सामने वाला दुखी है, रोने लगा है, अपोलॉजी मांग रहा है, इतने लेवल तक हो जाता ना, तब कहते हैं इसको आप ठंड पड़ गई, जैसे वो कहने में भी कई बार आ जाता है। अगर आप शांत रहेंगे, हो सकता है वो उनको थोड़ा समय के लिए अच्छा नहीं लगे, जैसे आप गर्म तवे पर अगर ठंडा पानी डालते हैं वो और उछलता है और वो उछलेगा ही, लेकिन अगर आप डालते जाते हैं तो वो तवा ठंडा हो जाएगा। इट इज नॉट अबाउट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट, इट्स अबाउट वो रिश्ता बना रहे।
2: सही बात।
3: अभी आर्ग्यूमेंट आप जीत गए, ईगो आपके सेटिस्फाई हो गई, और रिश्ता खराब हो गया और रिश्ता टूट गया, तो फिर मतलब क्या उस चीज का?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
7: No!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
9: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
10: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
9: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
12: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
11: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
12: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
11: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islip.
13: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: श्रवणी लिखती हैं कि अपने बीते हुए कल को कैसे भूलें।
3: आप अपने बीते हुए कल को भूल नहीं सकते हैं, लेकिन उससे जो आपने अंदर में हर्ट क्रिएट किया उसको हील कर सकते हैं। जो चीज हो चुकी है वो डिलीट तो नहीं हो सकती।
2: सही बात है।
3: चाहे वो कितना भी बुरा है, वो सीन आपके पास है, आप उसको ऐसे नहीं भूल सकते, वो डिलीट तो हो नहीं सकती है। लेकिन जरूर आपने उससे दुख लिया है। आप अपने साथ बैठे और अपने को पूछे कि उस सीन ने आपको क्या सिखाया
2: है।
3: जैसे आप उससे कुछ सीख लेते, चाहे वो आपकी रेजिलियंस बढ़ा करके गई, चाहे वो आपको मैच्योर बना करके गई, चाहे वो आपको यही सिखा करके गई कि एकदम ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए,
2: नहीं करनी है।
3: हाँ, आपने कुछ सीखा उससे, फिर वो सीन सुखदाई बन जाती है। तो इसलिए जब आप सीखते नहीं है और उसको बार बार याद करके दर्द क्रिएट करते रहते हैं, वो प्रॉब्लम है। बाकी तो जो हो गया आप उसको कभी भूल नहीं सकते, और जो हुआ था वो परफेक्ट था। आप देखे कि वो सीन आपके लिए क्यों आई थी और वो आपको क्या सिखाने के लिए आई थी।
2: वैसे भी मुझे लगता है श्रवणी की रियर व्यू मिरर को देख के आप आगे गाड़ी नहीं चला सकते। उसको देख के आप खाली ये देख सकते हैं कि पीछे क्या है, लेकिन आपको फोकस आगे ही होना चाहिए।
3: पर वो इम्पोर्टेंट भी तो बहुत
2: इम्पोर्टेंट है कि भाई पीछे एक बार देख लिया, पता है कि भाई ये है, अवॉइड करना है, इतने पे गाड़ी आ रही है पास में, लेकिन गाड़ी आपको आगे देख के चलानी है।
3: पास्ट ऐसा है जैसे फाइलिंग कैबिनेट होता है, आपने बिल्कुल जैसे कहा रियर मिरर है। फाइलिंग कैबिनेट इम्पोर्टेंट बहुत है, पर आप कभी कभी उसको रेफर करते हैं।
2: हाँ, उसी को देख के अपनी जीवन
3: आप आप आज कर, वो कैबिनेट है, कभी आप उसको रेफर करते हैं। ऐसे ही पास्ट रेफरेंस के लिए है।
2: बहुत बढ़िया।
3: सो दैट यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन।
2: बहुत अच्छा। तो जैसे सिस्टर ने कहा कि लुक बैक ओनली टू लर्न नॉट टू लिव देयर
3: एंड देन अगेन हीलिंग। अभी ये कहने में इजी है, पर हीलिंग के लिए टाइम लगता है। हीलिंग तब होती है जब प्यार से हीलिंग होती है। अब आप कई बार क्या करते हैं, लोग अपनी हीलिंग के लिए किसी मनुष्य से धोखा पाया, फिर किसी मनुष्य के प्यार से अपने को हील करने की कोशिश करते हैं, फिर दोबारा वहां से धोखा मिल जाता है तो और ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। सो अनकंडीशनल सोर्स जो है, जो भगवान का प्यार है, अनकंडीशनल लव है, उससे अपने को हील करने की कोशिश करें, वो इटर्नल सोर्स है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. Mirchi Mornings has officially begun. और मैं हूँ प्रिसिला. आज का डोज ऑफ म्यूजिक मस्ती एंड मिर्ची लेकर आ चुकी हूँ तुम्हारी लाइफ में ढम करके. अब तो मुझे चाह कर भी कुछ घंटों तक भगा नहीं सकते, तो अगले कुछ घंटों तक मेरे साथ बातें करो, मुझे सुनो, अपना मूड मिर्चीदार बनाओ. और आज का दिन इंडिया में बहुत ही खासम खास दिन है, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स फ्राइडे एंड फ्राइडे. आज है गांधी जयंती. सो यहाँ पर हम एक नाइस लिटिल पॉज बटन दबाकर बात करेंगे कि बापू टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ सिंप्लिसिटी, काइंडनेस एंड कीपिंग your cool, which sounds lovely until someone takes that last samosa at a family party. फिर अहिंसा की थ्योरी का प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाता है. बापू आज होते तो मेरा पेशेंस लेवल देखकर बिल्कुल भी प्राउड नहीं होते. हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल. एंड टुडे आल्सो मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर, रिमेम्बर्ड फॉर द आइकॉनिक जय जवान जय किसान. स्मॉल इन स्टैचर बट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री वॉज डेफिनेटली ग्रैंड्योर. लेकिन तुम अभी कहीं से भी सुन रहे हो, कॉफी इन योर हैंड, ट्रैफिक में स्टक हो, या फिर सीक्रेटली नेगोशिएट कर रहे हो विद योर सेल्फ कि 5 और मिनट सोकर उठ जाऊंगा या उठ जाऊंगी. वेलकम टू द शो. आज का मंत्रा काफी सिंपल है, कीप काम, कीप काइंड एंड कीप द म्यूजिक लाउड. मिर्ची पर मिर्चीदार वाइब्स बना कर रखो और मुझे जल्दी से बताओ कि आज का तुम्हारा मॉर्निंग मूड क्या है, पीसफुल है या पुलिसफुल है. जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. And come hang out with me on Instagram and X. Mirchi Pris is my handle name. Stay tuned and stay hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
3: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए.
4: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
2: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat, and many others.
5: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
2: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
5: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
2: Released by Zee Studios nationwide.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे. ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
10: डिड यू सी माय न्यू काउच? वी पिक्ड इट अप फ्रॉम इनकांटो इन इटली. एंड दैट डाइनिंग टेबल, इट्स फ्रॉम कैटलन इटालिया.
11: ये मिसेस चोपड़ा ना कीप शोइंग ऑफ हर फर्नीचर जस्ट बिकॉज हर हस्बैंड्स बिजनेस पिक्ड अप रिसेंटली. व्हेन डिड शी विजिट इटली? Chopra saab, so how was Italy?
12: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
11: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
13: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
14: Beta, shaadi next week hai. Aur tumhara abhi paise bhejta hu, sirf dialogue hi hai.
15: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में.
14: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
16: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
17: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
18: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
19: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
20: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
19: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
20: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
19: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.
21: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
22: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
21: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
23: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
21: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
20: एक ही होता है.
21: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
24: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
8: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस। आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रिसिला हियर विद मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब वेदर चेक के टाइम आ चुके हैं। हां जी, आज जैकेट को घर में रहना है या बाहर तुम्हारे साथ जाना है, लेट्स फाइंड आउट। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट अराउंड 65 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स सनी, लेकिन फील हो रहा है क्लोजर टू 66 डिग्रीज फारेनहाइट। मॉर्निंग में थोड़ा सा पार्टली क्लाउडी रहने वाला है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा क्लाउड्स का अटेंडेंस जो है वो भी बढ़ता जाएगा। आज का टेम्परेचर रेंज देख लेते हैं, 64 टू 83 डिग्रीज फारेनहाइट, यानी कि रफली 18 टू 28 डिग्रीज सेल्सियस। यस्टरडे का हाई था 78 डिग्रीज फारेनहाइट, सो टुडे इज डेफिनेटली अ लिटिल बिट वार्मर एंड ह्यूमिडिटी प्लस सनशाइन की वजह से फील लाइक टेम्परेचर जो है वो एक्चुअल टेम्परेचर से थोड़ा सा डिफरेंट यानी कि बढ़ा हुआ लग सकता है। विंड साउथ वेस्ट से अराउंड 10 माइल्स पर आवर आ रही है, सो हवा जो है बेसिकली कह रही है मैं उना एसी की क्या जरूरत है तुम्हें। रेन का चांस डे टाइम में सिर्फ 10% है, बट इवनिंग के बाद क्लाउड्स सीरियस हो जाएंगे एंड ओवरनाइट लाइट रेन का चांस जंप्स टू अराउंड 45%। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में रफली 2 मिलीमीटर्स की रेन जो है वो एक्सपेक्टेड है, सो कम्यूट करने के लिए अम्ब्रेला साथ में कैरी करना बनता है। बारिश आए तो हीरो ना बने, आप तैयार रहे अपने छाते के साथ। बाहर जा रहे हो तो साथ में अपना पानी कैरी करना। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, वेयर योर एसपीएफ 50++++ वाला सन प्रोटेक्शन एंड साथ साथ में मिर्चीदार वाइप्स बना कर रखो। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड वेदर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मुझसे कनेक्ट करना। व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर, यानी कि 9033647244 पर, एंड फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, good morning, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। अब टाइम आ चुका है मिर्ची आवर का 3 का, जहाँ पे 3 अपडेट्स मिलेंगी तुम्हें फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले गूगल के कीबोर्ड अब स्टेशनरी रहने से बोर हो चुके हैं। यस, गूगल जापान ने बनाया है जी बोर्ड, स्पिनिंग कीबोर्ड। कीज कन्वेयर बेल्ट की तरह मूव करती रहेंगी और तुम्हारी फिंगर्स जो है बेसिकली एक ही जगह पर खड़ी रहकर टाइप करती रहेंगी। 4 रोज, 29 कीज ईच, टोटल 116 कीज। मतलब कि कीबोर्ड नहीं, ये टाइपिंग का ट्रेडमिल है। नंबर 2 पर फ्लाई दुबई फ्लाइट की टेरिफाइंग सिचुएशन के बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था। इंडियन कैप्टन स्मिथ मचार वॉज अटैक्ड बाय हिज को पायलट during a flight from Dubai to Tel Aviv. The aircraft lost significant altitude but Captain Machar managed to open the cockpit door despite being injured, allowing passengers and crew to intervene. The plane eventually landed safely in Saudi Arabia. And in a video call with the Indian PM Narendra Modi from the hospital, the captain became emotional while recounting what happened. A genuinely difficult moment for him and a reminder that sometimes courage is simply doing what needs to be done when everything else is going wrong. And lastly, cricket se Yuvraj Chahal says goodbye to first class cricket. After 49 matches and 148 wickets, Chahal has retired from red ball cricket. His test dream didn't happen, but he says he's not done yet. He wants to continue chasing opportunities in ODIs and T20s. And that's your Mirchi Hour ka 3. Mujhse bhi connection banao. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. And WhatsApp par mera number hai 90336472444. Mirchi Dar Bangas ka time hai. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La
1: virpa la burga. Mirchi, burga. Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता दो।
2: हाँ, तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: दिस इज रिगार्डिंग व्हाट?
2: बस आपके ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को?
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर। सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार, मैं मंडे ट्यूजडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूजडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूजडे किसे कितने बजे सर? ट्यूजडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे?
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
2: सर संडे 3 बजे दिन में सर? मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए।
2: पहले अपने ही निकाल।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: This October,
6: witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris and dance academies like Bolly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, garba and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville from 3 to 9 PM. Entry and parking is free.
7: Sona kharidne ke soch rahe hai? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price bar jaye, gold bars kharide wholesale price pe only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
10: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
11: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग SD कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
10: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
11: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। SD कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
12: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है, और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद 0 ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
15: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
16: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
17: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
15: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat and many others.
18: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
15: the end we've been waiting for. Drishyam, the conclusion. In cinema, 2nd October.
5: Because the story is not yet over. The last part is left.
15: Released by Zee Studios nationwide.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Wow, yehi to hai mera dream lehenga.
19: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
18: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
19: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
18: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
20: तेरा क्या होगा कालिया?
21: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
20: अब मिर्ची खा.
22: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे Mirchi Mornings. And now let's talk about the Asian Games.
2: Mirchi, watch it.
1: India's medal haul is growing by the hour with athletes making their mark across wrestling, boxing, archery, sailing and much more. और दो नाम जो तुम्हें definitely याद करने आज के दिन वो है सुजीत कलकल and Lovlina Borgohain. 23-year-old सुजीत कलकल has grabbed gold in the men's 65 kilo wrestling category and his final was a proper never give up moment. He fought back from a 2-9 deficit to win 10-9, मतलब कि मैच खत्म होने तक भाई ने कहा है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. एंड लवलीना बोरगोहेन हैज पंच्ड हर वे टू गोल्ड इन वुमेन 75 किलो बॉक्सिंग बीटिंग चाइनाज बाओ ज़ी 5-0 से. एंड दिस मेक्स लवलीना द फर्स्ट इंडियन वुमन सिंस मैरी कॉम इन 2014 टू विन एशियन गेम्स बॉक्सिंग गोल्ड. एंड कल क्रिकेट गेट्स अ लिटिल मोर मिर्ची दार. इंडिया फेसेस पाकिस्तान इन मेन्स T20 फाइनल फॉर गोल्ड आफ्टर इंडिया बीट श्रीलंका बाय 124 रन्स एंड पाकिस्तान बीट बांग्लादेश. तभी ये दोनों साथ में मैच खेलने वाले हैं. सो अभी से अलार्म सेट कर लो, कल होने वाला है ये मिर्चीदार मैच. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मुझे बताओ तुम किस चीज के लिए एक्साइटेड हो. इंस्टा और एक्स पे मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: termination fee. Honest Clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
1: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
2: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
3: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ. टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
7: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
6: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
8: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
9: Inefficient, very complex,
10: clumsy or
9: confusion ही confusion.
10: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
13: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

Yeah, भाई तेरा बस लिख तगाने, हर दुनिया देती ताने, वैसे इन्हें दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर डॉक्टर बनने का ड्रीम है अमेरिका में और करियर को बस देखते हैं वाले मोड में अभी रख रखा है, तो लिसन अप। एम्स एजुकेशन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज वेलकमिंग एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु मीट द एडमिशन एंड F1 वीजा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स विद द ऑप्शन टू रिसीव एन I-20। एंड कोर्सेज पता कौन कौन से होने वाले हैं? यू हैव गॉट ऑप्शंस इन सर्जिकल टेक्नोलॉजी, MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, एनेस्थीसिया एंड न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज। साथ साथ में AAS प्रोग्राम्स इंक्लूड अनपेड क्लिनिकल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एट रिप्यूटेड मेडिकल सेंटर्स। मतलब कि क्लासरूम की थ्योरी को रियल वर्ल्ड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ साथ कनेक्ट करके तुम्हें ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। सो इफ यूर फ्रॉम अ मेडिकल और हेल्थ केयर बैकग्राउंड एंड अमेरिका में अपने करियर की स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लिखना चाहते हो, तो चेक करो अभी के अभी aimseducation.edu को, दैट इज aimseducation.edu। एंड हाँ, पेरेंट्स को भी फॉरवर्ड कर देना, बिकॉज देसी पेरेंट्स के लिए बेटा करियर का क्या प्लान है इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी, तो उनको पता चलेगा तुम क्या कर रहे हो। एंड अगर डिटेल्स तुम्हें ढंग से याद नहीं तो मैं एक और बार बता देती हूँ, एम्स एजुकेशन है जहां पे तुम अमेरिका में स्टडी कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो हेल्थ केयर में, एंड यू कैन टेक योर करियर फॉरवर्ड इफ यू आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चांस। एंड अभी मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। इफ यू वॉन्ट नो मोर अबाउट इट यू कैन आस्क मी देयर, एज वेल एज व्हाट्सएप भी कर सकते हो तो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। अभी चलाते तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स। मैं हूँ प्रिसिला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
1: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है।
0: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है। BBSCA presents मोनाली ठाकुर लाइव, एक एक्सक्विजिट इवनिंग, अ स्पेक्टेक्युलर कॉन्सर्ट, October 10th, 7:30 PM, प्लेनफील्ड हाई स्कूल ऑडिटोरियम। टिकट्स ऑन सुलेखा एंड mongobashi.sca.org, कॉन्टैक्ट 6503055624।
1: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
5: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
1: Wait, they can see us on Sunday?
5: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम, साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द क्राफ्टी हैंड्स .com और कॉल 732-397-0057।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची का।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, मेरा नाम है प्रिसिला और अब सुनने वाले हो तुम मिर्ची पर गोल्ड रेट अपडेट।
2: rajjewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,175. $4,175 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहे हैं. डेफिनेटली एंट्री पॉइंट बनता है. गोल्ड में इन्वेस्ट करें. 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड प्लैटिनम रिंग में सेट. आइए राज ज्वेल्स के साथ स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ आप आज अप्रूव होने पे गोल्ड ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के पैसे राज ज्वेल्स की टीम को दे सकते हैं. आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें rajjewels.com के साथ. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: एंड देयर यू गो, लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मुझसे कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर ढूंढो मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. अगर व्हाट्सएप पर कनेक्ट करना है तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, good morning, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। Time for your daily dose of मिर्ची आवो के थ्री। सबसे पहले इलॉन मस्क मेड अ रिमार्क ऑन एक्स व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू अ पोस्ट कॉलिंग इंस्टाग्राम एन इनहेरेंटली फीमेल ऐप एंड नेचुरली इंटरनेट ने चाय बना दी। सम यूजर्स पुश बैक सेइंग इंस्टाग्राम इज फॉर एवरीवन व्हाइल अदर्स आस्क द ऑब्वियस काउंटर क्वेश्चन, बॉस देन एक्स किसके लिए है। बेसिकली दिस इज द लेटेस्ट बैटल ऑफ सोशल मीडिया। नंबर टू पर इंडिया के मुंबई का टर्मिनल 1 एट द एयरपोर्ट इज स्केड्यूल्ड टू स्टॉप फ्लाइट ऑपरेशंस फ्रॉम अक्टूबर 25th फॉर रीडेवलपमेंट, with the shutdown expected to last until around 2029 to 2030. Airline operating from T1 can shift flights to Navi Mumbai Airport. So, Mumbai travelers, flight book karte waqt apni window ki seat ya aisle seat mat puchna, which airport bhi puchna saath mein. And lastly, cricket se Team India's 2027 ODI World Cup schedule is out. India opens against Australia on October 7th in Cape Town. And then the big India-Pakistan clash is on October 10th in Johannesburg. After that, Afghanistan on October 14th and qualifier A on October 17th and Zimbabwe on October 27th. That is a cue for you to book your calendars. Right now, sun rahe the Mirchi Mornings. Main hoon Prisala, tumhare saath mein. Let's head straight to Mirchi Dar Bangers. Connect with me Insta or X par. Mera handle hai Mirchi Pris. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
3: अरे बोल कौन रहा है
4: सर? ये वाला भेजने बीप।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
0: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
4: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेजने सर बीप।
3: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
0: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
4: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
3: अरे बावले हो गए हो क्या?
0: अरे बावले हो गए हो क्या?
4: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, ये और करोगे बीप।
3: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
0: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
4: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं
3: लास्ट। ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
0: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
4: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
3: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
0: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
4: सर ये वाला ठीक है बीप।
3: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
0: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
4: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
0: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
4: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
3: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
0: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
4: सेंट सर, ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
3: अरे भाई किसको भेज दिया?
4: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
3: अबे ओ पागल ये क्या कर दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पागल।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: नवरात एकत स्पिरिट
9: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
8: रमो गरबा डेली 11-19 ऑक्टोबर सांजे 7 कलाक थी।
9: तारीख 18मी ना रोज 8म यज्ञ, 19मी ए 9म यज्ञ अने 25मी ए शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट gayatricenter.org टुडे।
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
15: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
14: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
15: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
16: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
17: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
16: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
17: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
18: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
19: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
18: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. Time for your राशि zone का पहला पार्ट, यानी कि पहली छह राशियाँ.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: एरीज यानी कि मेष राशि, मीटिंग्स और एनकाउंटर्स आज इम्पोर्टेंट है. अराउंड यू सपोर्ट भी मिल रहा है, सो नेटवर्किंग मोड जो है उसे ऑन कर लो. लकी कलर आज तुम्हारा है रेड, लकी नंबर इज 9. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, स्पेशली व्हेन यू वर्क विद पीपल नॉट अगेंस्ट देम. फैमिली फ्रंट भी स्टेबल है, मतलब घर पर आज अननेसेसरी कोर्टरूम ड्रामा बिल्कुल नहीं होने वाला है. लकी कलर इज एमरल्ड ग्रीन, लकी नंबर इज 6. जेमिनी यानी मिथुन राशि, गेन्स मॉडरेट है, सो एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा एयरप्लेन मोड पर रखो. डेली टास्क्स में निग्लिजेंस मत करो, छोटी मिस्टेक्स कभी कभी फुल बॉलीवुड प्लॉट ट्विस्ट बन जाती हैं. लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 3. कैंसर यानी कर्क राशि, एल्डर्स की बात सुनना आज स्पेशली इम्पोर्टेंट है और इम्पल्सिव डिसीजन से बचना भी बहुत जरूरी है. मतलब कि मैंने बस कर दिया है वाला एटीट्यूड आज थोड़ा होल्ड पर रखो. लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 2. लियो यानी कि सिंह राशि, हार्ट की बात क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हो और ओपोजिंग ओपिनियंस को भी हैंडल कर पाओगे आज के दिन. बेसिकली डिबेट हो तो माइक ड्रॉप से पहले डिप्लोमेसी को चुनना. लकी कलर इज गोल्डन येलो, लकी नंबर इज 1. वर्गो यानी कन्या राशि, मेन गोल पर फोकस करो. आज स्पिरिचुअल काम तुम्हें सेंटर में रखेगा, दुनिया चाहे कितना भी नोटिफिकेशन भेजे. लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 7. एंड दैट्स योर फर्स्ट सेट ऑफ राशि जोन. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ, दूसरा सेट लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में. तब तक तुम सुनो ये मिर्ची तार बैंगर्स और मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
3: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
2: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियंस ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे. व्हाट डू वी डू?
6: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 Days Pediatrics. दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस. नाउ वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग.
5: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
6: वी आर ओपन 7 days अ वीक इंक्लूडिंग संडे. द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स, ऑफरिंग सेम डे सिक केयर. वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंड areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
12: Tu safar mera.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। अब सुनने वाले हो राशि जोन पार्ट टू।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, इंटेलेक्चुअल एनर्जी हाई है, ब्रेनफुल पावर पे चलने वाला है, बट अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना। हर डिबेट का आंसर्स देना जरूरी नहीं होता है और हर सेल में शॉपिंग करना भी जरूरी नहीं होता। लकी कलर इज रॉयल ब्लू, लकी नंबर इज 4। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वर्क केयरफुली एंड स्टबनेस को थोड़ा सा साइड में पार्क कर दो यार। क्लोज रिलेशनशिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखो और हर बात पर मेरी ही चलेगी से नेटफ्लिक्स भी, रिलेशनशिप भी, सब कुछ खराब होने वाला है। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, मेंटल टेंशन ईज होगी और फैमिली रिलेशंस में इंप्रूवमेंट आएंगे। बस बजट पे थोड़ा सा नजर रखो, पीस ऑफ माइंड अच्छा है बट बैंक बैलेंस को भी थोड़ा सा पीस देना चाहिए। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 5। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, फोकस तुम्हारा काफी स्ट्रांग है, प्लान्स को पुश करने का गुड टाइम है, फाइनेंशियल सिचुएशन बैलेंस्ड रहेगी, सो स्टेडी विंस द रेस। आज ओवरथिंकिंग को अनपेड इंटर्न बना लो यार, काम नहीं है कुछ उसके पास। लकी कलर इज चारकोल ग्रे, लकी नंबर इज 10। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, प्रोफेशनल रेपुटेशन ग्रो कर सकती है और लेजर फोकस से पुराने ऑब्स्टिकल्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे। बेसिकली जो काम उफ कैसे होगा लग रहा था, आज वो डन डना डन लगने वाला है। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 11। पाइसेस यानी कि मेन राशि, थिंग्स स्पीड अप फास्ट, न्यू इन्विटेशंस आ सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी पोजिशन और प्रेस्टीज को बूस्ट कर सकती है, सो इनबॉक्स चेक करते रहना, कहीं डेस्टिनी स्पैम फोल्डर में जाकर बैठी हो। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 12। एंड दैट्स इट, योर राशि जोन पार्ट टू हैज एंडेड। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स चल रहा है। आने वाले मिर्ची दा बैंगर्स मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
4: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
5: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
3: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat and many others.
6: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है।
3: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
6: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
3: Released by Zee Studios nationwide.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzylin.
10: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And with that, Mirchi Mornings आ चुका है अपने रैप अप के टाइम के नजदीक. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और जाते जाते क्विक क्रिकेट अपडेट देकर जाऊंगी तुम्हें, बिकॉज देसी लोगों के लिए क्रिकेट न्यूज इज बेसिकली लाइक वेरी इमोशनल न्यूज, है ना. ICC हैज अनाउंस्ड सम न्यू रूल्स फॉर क्रिकेट, स्पेशली फॉर मेन्स क्रिकेट. अगर बैटर क्रीज पर टाइम पर रेडी नहीं हुए तो पहले मिलेगी वार्निंग, फिर मिलेगी फाइनल वार्निंग, और उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए 5 पेनल्टी रन बनाने पड़ेंगे. मतलब भाई, बैटिंग के लिए आए हो तो फैशनेबली लेट होना अब अनिवार्य नहीं है. और टेस्ट क्रिकेट में पिंक बॉल डे टाइम टेस्ट में यूज हो सकती है, बट ओनली इफ बोथ टीम्स अग्री. और एक इंटरेस्टिंग चेंज और आया है, अगर टेस्ट के दिन के लास्ट ओवर में विकेट गिर जाए तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली पैक योर बैग्स बॉयज नहीं होता है, प्ले कंटिन्यू हो सकता है. बेसिकली कह रहे हैं कि टाइम पर आओ, रूल्स फॉलो करो, ड्रामा सिर्फ बैटिंग में ही रखा जाएगा. एंड नाउ अनफॉर्चुनेटली मेरी इनिंग्स जो है वो यहाँ पर खत्म होती है. मिलूंगी तुम्हें अब मंडे को. यू हैव अ ग्रेट वीकेंड. मेरी तरफ से साइन ऑफ हो गया यहाँ पर, लेकिन जाने से पहले मैं याद तो दिला दूं कि मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा और एक्स पे. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: कभी कभी किसी कैरेक्टर की दुनिया में एंटर करने के लिए सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ना एनफ नहीं होता।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: आपको उसकी दुनिया को जीना पड़ता है एंड बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं इन आर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो ऐसा कर पाते हैं, वन ऑफ देम बीइंग रसिका दुग्गल। और उनके करियर को देखें तो शायद उनकी जर्नी इसी डिफरेंस को ब्यूटीफुली डिफाइन करती है। किस्सा जैसी फिल्म से लेकर मंटो, दिल्ली क्राइम और मिर्जापुर तक उन्होंने बार बार ऐसे कैरेक्टर्स चूज किए जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। खुद रसिका ने भी कहा है कि मंटो ने उन्हें एक डिफिकल्ट करियर फेज से बाहर निकाला और मिर्जापुर एंड दिल्ली क्राइम ने उन्हें एक वक्त में ही कम्प्लीटली डिफरेंट शेड्स एक्सप्लोर करने का मौका दिया। और अब उनकी अपकमिंग फिल्म लिटिल थॉमस के लिए उनकी प्रेप के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो जेसी मिरांडा नाम के कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं, हु इज डीपली कनेक्टेड विद म्यूजिक, जिसके लिए रसिका ने बजाबते पियानो क्लासेस लिए हैं, नॉट फॉर अ डे और अ वीक बट 4 महीनों के लिए, जहां उन्होंने मोजार्ट, शूमन और चौपैन की कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशंस की प्रैक्टिस की। और क्योंकि उसी वक्त वो एक हॉरर शो की शूटिंग भी कर रही थी तो उस शूट पे वो अपना पोर्टेबल कीबोर्ड साथ लेकर जाती थी और टेक्स के बीच में प्रैक्टिस किया करती थी। और शायद यही रसिका के करियर की सबसे इंटरेस्टिंग थ्रेड है। रोल छोटा हो या आइकॉनिक, कैरेक्टर फमिलियर हो या बिल्कुल अनफमिलियर, वो उसके अंदर घुसने के लिए कुछ नया सीखने को रेडी रहती हैं। और शायद इसीलिए उनके कैरेक्टर स्क्रीन पर एक्टेड नहीं, लिव्ड इन फील होते हैं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Pepe Mirchi.
1: Es cabana, pues cabana, sacabana.
2: ¡Rambala!
1: ¡Murga, murga! ¡La fiesta la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: ¿Aló?
4: Hola, doctor Savita, se va a escribir.
3: ¿Doctor Savita, bol rí?
4: Doctor, ya... डॉक्टर बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
3: क्या परेशानी है?
4: ना एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता।
3: तो वो तो भरता ही है।
4: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
3: अच्छा,
4: ये बुढ़ापे में हो गया। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
3: हाँ हाँ।
4: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
3: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
4: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
3: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
4: नहीं,
3: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
4: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
3: अच्छा।
4: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
3: अच्छा, लेकिन मैं समझ रही हूँ।
4: हाँ, क्या समझ रही
3: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
4: डॉक्टर सुमिता।
3: हाँ जी,
5: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही बेगा मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
3: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
5: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
3: कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
10: Ne bete ke liye justice chahiye.
11: Mujhe justice nahi, badla chahiye.
9: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar and many more.
12: Is baar khatra kab, kaise aur kahan se aayega, batana mushkil hai.
9: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
12: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. आखिरी हिस्सा बाकी है।
9: रिलीजिंग नेशन वाइड बाय जी स्टूडियोज।
13: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
14: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
16: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
17: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
16: Wait, they can see us on Sunday?
17: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
18: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
19: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
18: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
3: Listener mein, back to back gana sunega.
7: Back to back gana sunega.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
10: कुछ गानों की अपनी ही किस्मत होती है.
5: Bollypedia.
10: हम दिल दे चुके सनम। नहीं नहीं, इस गाने की नहीं बट इस फिल्म की जरूर से बात कर रही हूँ, जो रिलीज हुई थी 1999 में, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली, जिसमें ऐश्वर्या राय, सलमान खान और अजय देवगन लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। और इस फिल्म का ये एपिक ट्रैक तो डेफिनेटली याद होगा आपको।
0: तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार।
10: सो ये गाना ना इस मूवी के लिए फाइनलाइज नहीं हुआ था। यस, बेसिकली लिरिसिस्ट महबूब ने ये कहानी सुनाई एक इंटरव्यू में, और उन्होंने बताया कि भाई वो और म्यूजिशियन इस्माइल दरबार साथ में कई गाने क्रिएट करके अपने बैंक में डाल दिया करते थे, एंड तड़प तड़प के वॉज वन सच सॉन्ग जो फाइनलाइज हुआ था फॉर अ मूवी नेम्ड दस। इसको डायरेक्ट करने वाले थे लेट मुकुल आनंद जी, बट अनफॉर्चुनेटली 1997 में ही पास्ड अवे एंड द मूवी गॉट शेल्व्ड, जिसके बाद संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम के एल्बम का डिस्कशन कर रहे थे, तब इस्माइल दरबार और महबूब का ये गाना उन्होंने सुना, जो उन्हें इतना पसंद आ गया दैट उन्होंने इन दोनों ही आर्टिस्ट को अपनी इस फिल्म के एल्बम के लिए फाइनलाइज कर लिया। तभी मैंने कहा कुछ गाने अपनी अलग ही किस्मत लेकर आते हैं, और बड़े पर्दे पे जो कहानियां हम देखने जाते हैं उसके पीछे ऐसी ही कई छोटी छोटी कहानियां छुपी होती हैं, जो ढूंढकर मैं आप तक लेकर आती हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
3: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
2: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: ये मोह मोह के धागे,
6: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती हैं।
2: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है। BBSCA presents Monali Thakur Live, एक exquisite evening, a spectacular concert. October 10th, 7:30 PM, Plainfield High School Auditorium. Tickets on Sulekha and mongobashi.sca.org. Contact 650-305-5624.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
2: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
8: खेलो मगर प्यार से।
9: श्रुति, श्रुति,
8: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो फिल्मची गेम खेलने की बात कर रही हूँ। यार बाबू मोशाय, आप कहाँ ही जा रहे हो? नॉटी नॉटी। चलिए दिमाग को वापस लाइए, क्योंकि यहाँ इस गेम में लगाना है ना दिमाग। सो बेसिकली द ड्रिल इज कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति के DMs में जाके अपना नंबर भेजिए, ताकि कॉल करके मैं आपके साथ इस गेम की शुरुआत कर सकूं। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे हैं जूली। हेलो। तो जूली जी, कहाँ से बात हो रही है आपसे?
10: अभी तो हम ग्रेटर नोएडा से बात कर रहे हैं।
8: अरे वाह, हम आप क्या पटना, बिहार, झारखंड?
10: पटना।
8: अरे रे, हम लोग तो एक ही शहर के निकले जी। तो क्या गेम शुरू करने के लिए तैयार हैं आप?
10: हाँ, हम तैयार हैं।
8: बहुत बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुंबई की बारिश में हीरो टेलीफोन बूथ पे पापा से बात कर रहा है और सामने दिखती है हीरोइन बच्चों के साथ बारिश में मस्ती करती हुई।
10: दिया मिर्जा।
8: ओहो, कौन सी फिल्म है, नाम बताइए।
10: रहना है तेरे दिल में।
8: क्या बात है। तो रहना है तेरे दिल में रीना से उसका नकली फियांसे बनके कौन मिलता है?
10: माधवन।
8: आर माधवन लड़कियों का वशीकरण किस फिल्म में करते हैं?
10: शैतान।
8: बहुत बढ़िया। शैतान में ज्योतिका के हस्बैंड कौन है?
10: अजय देवगन।
8: अजय देवगन की फिल्म जिसमें वो सरदार जी बने हैं?
10: सन ऑफ सरदार।
8: सन ऑफ सरदार में संजय दत्त की बहन कौन है?
10: संजय दत्त की बहन ये है सोनाक्षी सिन्हा।
8: सोनाक्षी सिन्हा को थप्पड़ से डर किस फिल्म में नहीं लगता?
10: दबंग।
8: दबंग में रॉबिन हुड पांडे कौन है?
10: सलमान खान।
8: क्या बात। सलमान खान दीवाना बनके अपनी ओ ओ जाने जाना को किस फिल्म में ढूंढते हैं?
10: प्यार किया तो डरे।
8: ओहो लड़की, एकदम फिल्मी कीड़ा जाग रहा है। प्यार किया तो डरना क्या में अरबाज खान की बहन कौन है?
10: काजोल।
8: काजोल को अपने बेस्टी से किस फिल्म में प्यार होता है?
10: कुछ कुछ होता है।
8: कुछ कुछ होता है में अंजलि के पापा कौन है, मतलब छोटी वाली अंजलि?
10: शाहरुख खान।
8: शाहरुख खान 6 दिन में लड़की बटाने का टेक्निक किस फिल्म में बताते हैं?
10: बादशाह।
8: मतलब छोटी वाली अंजलि।
10: शाहरुख खान।
8: शाहरुख खान 6 दिन में लड़की बटाने का टेक्निक किस फिल्म में बताते हैं?
10: बादशाह।
8: आ आ आ आ आ, यहाँ आप गलत हो।

0: gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
3: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी.
4: October 24th and 25th, Hammerhold Upper Elementary School, East Brunswick, New Jersey. Register today at maitriusa.org.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: दिस अक्टूबर
7: विटनेस द पीक ऑफ एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, अ प्रीमियर कम्युनिटी सेलिब्रेशन विद आर्टिस्ट्स लाइक जयश्री, स्पर्श शाह, नीनी आयरिस एंड डांस अकेडमीज लाइक बॉली मूव्स, शिवालिक, तारा आर्ट अकेडमी. एंजॉय फूड, गरबा एंड वन ऑफ अ काइंड फायरवर्क्स ऑन अक्टूबर 3rd एट कैनेडी पार्क, सेयरविल, फ्रॉम 3 to 9 PM. एंट्री एंड पार्किंग इज फ्री.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: खेलो मगर प्यार से.
13: Shruti, Shruti,
14: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
15: देखो, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा that मैं मिर्ची फिल्म की गेम की बात कर रही हूँ, जिसकी शुरुआत आज हमने की थी जूली मैम से. But she got stuck at a point और उसके आगे गेम खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं रानू. हेलो जी मैम, कैसी हैं आप और कहाँ से बात हो रही है?
16: हैदराबाद से.
15: ओ वाओ, तो रानू हमारा गेम जहाँ अटका था, क्या उसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहोगे?
16: यस यस, प्लीज गो अहेड.
15: ऑलराइट, सो द क्वेश्चन दैट शी गॉट स्टक ऑन वाज, शाहरुख खान 6 दिनों में लड़की पटाने का टेक्निक किस फिल्म में बताते हैं?
16: कल होना हो
15: में नैना का मेल बेस्ट फ्रेंड कौन है?
16: सैफ अली खान.
15: एक पैशनेट म्यूजिशियन ट्रेन पे कस्तो मजा है ले लईबा किस फिल्म में करते हैं?
16: परिणीता
15: में बचपन से सैफ अली खान से किसको प्यार है?
16: विद्या बालन
15: को जिंदगी में एंटरटेनमेंट किस फिल्म में पसंद है?
16: डर्टी पिक्चर
15: में प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है?
16: इमरान हाशमी.
15: यस, इमरान हाशमी की किस गैंगस्टर फिल्म का सेकंड पार्ट आ रहा है?
16: आवारापन.
15: यस, और ये जो पूरी फैमिली ने मिलकर साथ में गेम खेला है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, आई रियली लाइक इट.
16: थैंक यू. एक्चुअली हम लोग सारे एक ही रूम में, एंड माय डॉटर इज जस्ट 6 इयर्स ओल्ड.
15: ओके,
16: शी इज प्रॉम्प्टिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग, शी इज प्रॉम्प्टिंग.
15: ओह,
16: एंड टुडे इज आवर 8th एनिवर्सरी, दैट इज व्हाई माय हस्बैंड इज जस्ट नियर मी.
15: ओह माय गॉड, दैट इज सो स्वीट. विश यू बोथ अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी.
16: Thank you so much.
15: It was so lovely talking to you, ma'am. And of course, the way you have ended the game is amazing. तो इसी बात पे आपको ये टैग तो जरूर दूंगी मैं.
13: मिर्ची फिल्मची.
15: तो बाबू मोशाय, अगर आज का ये मिर्ची फिल्म ची गेम आपसे मिस हो गया, देन वरी नॉट माई फ्रेंड. मिर्ची श्रुति के फेसबुक या इंस्टा पे जाके अपना नंबर DM कीजिए, एंड रेस्ट आई टेक केयर ऑफ. टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: इन फिल्मों में हीरोइंस को बचाया नहीं जाता, दे फाइट बैक एंड राइट देयर ओन स्टोरी। श्रुति,
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और यार, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ना गिने चुनी ही ऐसी फिल्में हैं, और इसलिए मैंने सोचा आज पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही फेमिनिस्ट फिल्मों की बात करूँ जहाँ वुमेन एक्चुअली टुक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ एंड फॉट बैक। लिस्ट में सबसे पहले वील टॉक अबाउट सिस्टम मिडनाइट, नंबर दो पे NH10, नंबर तीन पे मॉम, नंबर चार पे बुलबुल एंड नंबर पांच पे नो वन किल्ड जेसिका। तो शुरू करते हैं करण खंडारी डायरेक्टोरियल सिस्टम मिडनाइट से, जो 2024 में रिलीज हुई थी, स्टारिंग राधिका आप्टे एज उमा, जो एक अनकन्वेंशनल वुमन है हु रिफ्यूजेस टू फिट इनटू द मोल्ड ऑफ अ ट्रेडिशनल हाउसवाइफ। देखो, हमें भी पता है कि शादी के बाद हैप्पीली एवर आफ्टर जरूरी नहीं कि हैप्पी ही हो। एंड सिस्टम मिडनाइट में राधिका आप्टे की उमा एक अरेंज्ड मैरिज में फंस जाती है, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल सबमिसिव वाइफ बनने को रेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी और क्वर्की स्टोरी टेलिंग के थ्रू ये फिल्म एक वुमन के रिबेलियन, फ्रस्ट्रेशन और फ्रीडम की सर्च को एक्सप्लोर करती है। ऑल्दो हो सकता है कि आधे से ज्यादा लोगों को इस मूवी की स्टोरी टेलिंग समझ में ही नहीं आ पाए, बट लेट मी टेल यू, इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था 2024 के कैन्स डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस इंटेंसिटी की मूवी है ये। तो अगर आप एक मर्द हैं और अपने अंदर के फेमिनिज्म को थोड़ा स्ट्रांग करना चाहते हैं, देन डू वॉच द मूवी। बाकी की चार फिल्मों की डिस्कशन सबसे कुछ ही देर में होगी। राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूं आपके साथ श्रुति। इट्स ऑन।

0: Milci.
1: Iscabana, Uscabana, Sacabana, Gabana, Burga, Burga, la Virba, la Burga, Milci, Burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहें तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने जब बीप के बाद करिए।
2: बीप। अरे बोल कौन रहा है?
4: अरे बोल कौन रहा है
3: सर, ये वाला भेज दें बीप।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
4: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
2: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
4: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
2: अरे बावले हो गए हो क्या?
4: अरे बावले हो गए हो क्या?
3: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
2: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
4: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
2: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
4: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
2: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
4: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: सर ये वाला ठीक है बीप।
2: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
4: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
4: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
2: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
4: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
3: सेंट सर, ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
2: अरे भाई किसको भेज दिया?
3: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
2: अबे ओ पागल ये क्या कर रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Oh no!
9: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
11: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ, जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
15: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
14: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F-1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
16: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
17: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।

0: From a damsel in distress to a powerful queen.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइनों का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन होता है, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अक्सर हमने हमारे हीरोइंस को प्यार करते, रोते और हीरो का इंतजार करते तो बहुत देखा है। लेकिन जब ये हीरोइंस खुद सवाल करती हैं, सिस्टम से लड़ती हैं और जरूरत पड़ने पर रिवेंज भी लेती हैं, तब कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और आज मेरे पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं ऐसी ही कुछ पांच फेमिनिस्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जिसमें द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स टुक द सेंटर स्टेज। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी सिस्टम एट नाइट। अब नंबर दो पे बात करते हैं NH-10 के बारे में, जो रिलीज हुई थी साल 2015 में। नवदीप सिंह की हार्ड हिटिंग थ्रिलर स्टारिंग अनुष्का शर्मा एंड नील भूपलम। माइंड यू, इस फिल्म को अनुष्का ने प्रोड्यूस भी किया था, दस मेकिंग हर प्रोडक्शन डेब्यू एज वेल। कहानी एक रोड ट्रिप की जो अचानक से टेरिफाइंग नाइटमेयर बन जाता है। NH-10 में अनुष्का शर्मा एज मीरा एक वायलेंट इंसिडेंट के बाद सर्वाइवल के लिए फाइट करती हैं। ये फिल्म ऑनर किलिंग, पेट्रियार्की और रूरल पावर स्ट्रक्चर्स को ब्रूटली एक्सप्लोर करती है, जहां मीरा का कैरेक्टर विक्टिम बन के रुकता नहीं बट फाइट बैक करता है। चलो लिस्ट में नंबर तीन पे अब बात करना चाहूंगी अबाउट द फिल्म मॉम, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय रवि उदयावर, विच इज अ रिवेंज थ्रिलर स्टारिंग श्रीदेवी मैम, सजल अली, अक्षय खन्ना एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी। माइंड यू, ये फिल्म श्रीदेवी मैम की 300th फिल्म थी और इसी के साथ उन्होंने अपनी सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत की थी इन दी इंडस्ट्री। कहानी का बैकड्रॉप फेल जस्टिस सिस्टम को दिखाता है, जब इन सारी चीजों से परेशान होके एक माँ खुद जस्टिस बन जाती है। फिल्म मॉम में श्रीदेवी अपनी स्टेप डॉटर के सेक्सुअल असॉल्ट के बाद उन गुनहगारों को सजा दिलाने के मिशन पर निकलती हैं। इन शॉर्ट, फिल्म का कोर है अ मदर्स लव, रेज एंड फाइट फॉर जस्टिस। तो बाबू मोशाय, अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी, देन डेफिनेटली यू शुड पुट इट इन योर वॉच लिस्ट। एंड टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, अपने आसपास के मर्दों को स्पेसिफिकली ये फिल्में जरूर दिखाएं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और अब से कुछ ही देर में ऐसी ही दो और फिल्मों की बातें होंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ये मोह मोह के धागे
3: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है।
4: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है। BBSCA presents मोनाली ठाकुर लाइव, एक एक्सक्विजिट इवनिंग, अ स्पेक्टेकुलर कॉन्सर्ट, अक्टूबर 10th, 7:30 PM, प्लेनफील्ड हाई स्कूल ऑडिटोरियम। टिकट्स ऑन सुलेखा एंड बोंगोबाशी SCA.org। कॉन्टैक्ट 6503055624।
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels। RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
6: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
7: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
8: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
9: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
10: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all in one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: जब एक औरत के साथ injustice हो तो उसको क्या करना चाहिए?
14: Shruti, Shruti, Shruti.
15: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
13: Of course, आप बोलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना चाहिए, उसको एक प्रॉपर रूट लेना चाहिए टू गेट जस्टिस। बट अगर जस्टिस सिस्टम ही उसको फेल करती जाए तो फिर क्या? क्या वो चुप रहेगी, सिस्टम का वेट करेगी, या खुद अपनी जस्टिस की फाइट लड़ेगी? वेल, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इस सवाल का जवाब हमें कई पावरफुल थ्रिलर्स के जरिए दिया है। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही फेमिनिस्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जहाँ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स टुक द सेंटर स्टेज। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट सिस्टम मिडनाइट, उसके बाद NH10, देन मॉम, और अब बारी है टू टॉक अबाउट द मूवी बुलबुल। साल 2020 में अन्विता द डायरेक्टोरियल, ये गॉथिक पीरियड। सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट सिस्टम मिडनाइट, उसके बाद NH10, देन मॉम, और अब बारी है टू टॉक अबाउट द मूवी बुलबुल। साल 2020 में अन्विता द डायरेक्टोरियल।

किल जेसिका, जो साल 2011 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय राजकुमार गुप्ता। इसमें विद्या बालन, रानी मुखर्जी और मायरा कर्ण लीड रोल्स में थे। सो एक मर्डर हुआ जिसके विटनेसेस थे, एविडेंस भी था, फिर भी जस्टिस इतना डिफिकल्ट क्यों था? वेल, नो वन किल्ड जेसिका जेसिका लाल मर्डर केस से इंस्पायर्ड क्राइम थ्रिलर है, जहां विद्या बालन प्लेज जेसिका सिस्टर सबरीना लाल। वहीं रानी मुखर्जी ने जर्नलिस्ट मीरा गेटी का रोल प्ले किया है। फिल्म में मीडिया पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जस्टिस सिस्टम के फेलियर्स को हाईलाइट किया गया है, एंड इट शोज हाउ अ वुमन्स फाइट कैन बिकम अ पब्लिक मूवमेंट। तो मेरे फेमिनिस्ट फिल्मों वाली पांच का पंच की लिस्ट में इतना ही। बाकी आप कोई ऐसी ही फिल्म इस लिस्ट में ऐड करना चाहें, देन फील फ्री टू डू दैट मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हिंदी सिनेमा की पहली पैट कॉम
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ओके इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी एक्सप्लेन। पैट कॉम का मतलब होता है पेट्रियोटिक कॉमेडी, और हिंदी सिनेमा की तरफ से ये पहली बार हो रहा है कि कोई पेट्रियोटिक कॉमेडी आ रही है। एंड द नेम ऑफ द मूवी इज उड़ता तीर बाबू मोशाय, जिसका ट्रेलर इज योर। एंड भाई साहब क्या ही बवाल ट्रेलर काटा है। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आकाश कौशिक। इस फिल्म की स्टारकास्ट एक अलग ही वाइब है। आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, मुकुल देव, राम कपूर, गुलशन ग्रोवर, राहुल बोस, सुहेल नायर, ब्रिजेंद्र काला, मतलब ऐसे ऐसे एक्टर्स जिनको आपने इनके क्राफ्ट के लिए कई बार अप्रिशिएट किया होगा। एंड कहानी का बैकड्रॉप अगर आपको बताऊं तो भाई, एक पाकिस्तानी स्पाई है जो एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए इंडिया भेजा जाता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि भाई उसकी याददाश्त ही चली जाती है और वो बन जाता है भारत का अल्टीमेट लेवल देशभक्त। और इस चक्कर में जो ह्यू एंड क्राई क्रिएट होता है, जो सिचुएशनल कॉमेडी आती है, वो आपको ट्रेलर में जब इस लेवल पे गुदगुदा रही है, हंसा रही है, देन आई एम 110% श्योर कि 9th ऑफ अक्टूबर को जब ये फिल्म थिएटर्स में आएगी तो बवाल ही काट डालेगी। बाकी आपके क्या ओवरव्यूज हैं अबाउट दिस पैट कॉमेडी, डू लेट मी नो अबाउट दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम HD2 WPRB प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना
2: दिल में मेरे आज क्या है
3: क्या है

मोहिनी मोहिनी मोहिनी, पूरा एयरपोर्ट बस इसी आवाज से गूंज उठा था। फिर रानी जींस पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। तो देखो, मुझे पता है कि पूरे दिन की थकावट अगर तुम्हें मिटानी है ना, तो बस यहाँ पे आने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारे मेरे बीच में सिर्फ एक ही चीज होती है, और वो है दीज एवरग्रीन रेट्रो सॉन्ग्स। और ऑफ कोर्स इन गानों के पीछे की कहानियां, उस रेट्रो जमाने की फिल्मों के पीछे की कहानियां। तो मैं अपना होमवर्क पूरा करके आती हूँ। आज जब मैं ये कह रही हूँ मोहिनी मोहिनी, तो बताओ कौन सी फिल्म पे एकदम रिसर्च करके आई है श्रेया। फुल होमवर्क, एब्सोल्युटली करेक्टली एप्टली डन। नहीं समझ में आया तो एक काम करो, कुछ गानों के उस पर जब मैं मिलूंगी तब बताती हूँ, तब तक सोचते रहो। फिर से रिपीट करती हूँ, मोहिनी मोहिनी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिस्टर कुमार।
3: या
4: हेलो सर, हाउ आर यू?
3: फाइन फाइन फाइन।
4: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
3: नहीं, आप
4: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
3: रिगार्डिंग
4: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
3: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
4: साढ़े चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊँ?
3: हाँ।
4: सर थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को?
3: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
4: सैटरडे 4 बजे सर, वो 4:30 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर। सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
3: हाँ मिलते हैं।
4: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे सर। कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
3: देखो यार मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
4: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर? ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
3: 7 बजे
4: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
3: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
4: सर संडे कितने बजे?
3: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
4: सर संडे 3 बजे दिन में सर। मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है वो, 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो।
3: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
8: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
7: Wait, they can see us on Sunday?
8: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
10: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
11: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
9: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
12: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
9: The end we've been waiting for. Drishyam, the conclusion in cinema 2nd October.
12: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
9: Releasing nationwide by Zee Studios.
13: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम। साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057।
14: The mortgage industry has changed over the years, par hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
15: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
14: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
15: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Tera kya hoga, Kalia?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: अब मिर्ची का
10: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मोहिनी मोहिनी एक ऐसी फिल्म जिसके पहले माधुरी दीक्षित ने भी नहीं सोचा था कि वो इंडिया की नंबर वन हीरोइन बन जाएंगी आफ्टर डूइंग दिस फिल्म। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ जैसे ही मैं मोहिनी मोहिनी कहती हूँ तो ऑफकोर्स आपको याद आ जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेल आज बात करेंगे फिल्म तेजाब की। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित वाज कास्ट ऑपोजिट अनिल कपूर। इस फिल्म में एक्चुअली बहुत सारे स्टार्स थे, चंकी पांडे थे, किरण कुमार थे, सुरेश ओबेरॉय थे, ऑफकोर्स अन्नू कपूर प्लेड अ वाइटल रोल, और माधुरी दीक्षित ने तब तक कुछ खास कदम नहीं जमाए थे और उनको लगा था कि वो इतने सारे स्टार्स के बीच में कहीं ना कहीं खो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवन दो द रोल वॉज इन दैट ग्रेट दैट शी गॉट, लेकिन द सॉन्ग दैट शी गॉट वॉज 1 2 3। कहिए क्या सुनेंगे आप? ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि कहते हैं कि जिस कंपनी ने कैसेट्स रिलीज किए थे, द ऑडियो कैसेट्स, उस समय यू नो कैसेट्स ही चला करते थे, तो उस कंपनी को बार बार लॉट में नए कैसेट्स का बैच रिलीज करना पड़ रहा था, बनाना पड़ रहा था, बिकॉज खत्म होते जा रहे थे मार्केट में। हाँ जी, सो तेजाब का ये वाला गाना भी थोड़ी देर में सुनाऊंगी, कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: This October,
4: witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris and dance academies like Bolly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, garba and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville from 3 to 9 p.m. Entry and parking is free.
5: Sona kharidne ke soch rahe hai? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye. Gold bars kharide wholesale price pe. Only at RK Jewels. RK Jewels. Best quality, best price.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
9: I am not going to bed with you ever again.
8: But why? What did I do?
9: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
8: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
9: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
8: Yes, come soon. Honey!
9: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
10: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
13: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Ah,
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
15: क्या कहा?

अच्छा, किस किस को शाहरुख खान का मन्नत अंदर से देखना है, देखना है, तो चलो मैं लेके चलती हूँ पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है तेजाब। 1988 की ये जो फिल्म थी, उसके बाद ना जब ये फिल्म रिलीज हुई तो 1990 तक आते आते माधुरी दीक्षित बिकेम द नंबर वन हीरोइन ऑफ इंडिया। वेल एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मन्नत की बात कर रहे थे हम, देखना है तो आपको ये फिल्म फिर से देखनी पड़ेगी क्योंकि शायद जब ये फिल्म बनी तो आपको नहीं पता होगा। इस फिल्म में अनुपम खेर का जो बंगलो दिखाया गया है और उसके शॉट लिए गए हैं, वो बंगलो अंदर से भी दिखाया गया है, बाहर से भी दिखाया गया है, वो है शाहरुख खान का मन्नत। आई एम श्योर अब इतने साल हो गए, उसमें बहुत सारा रेनोवेशन हो गया होगा, बट यही वो बंगलो है जो कि शाहरुख खान ने खरीदा था। यस, सो इन केस यू वांट टू हैव अ लुक, आपको तेजाब फिर से देखनी पड़ेगी। अनुपम खेर वाला घर आपको अब पता है ना कि शाहरुख खान का मन्नत है। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइड Store.
5: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
6: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
5: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
0: Aap sun rahe hain Purani Jeans, Shreya ke saath, sirf Mirchi par.

वेटर इतना घबरा गया था कि उसने एम्बुलेंस बुलाई, और मैनेजर इतना घबरा गया था होटल का कि उसने तो सीधे पुलिस बुला ली थी। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म टुडे तेजाब। अब हुआ ये कि गाना है ना सो गया ये जहां, इस गाने से पहले राइट बिफोर द सॉन्ग देयर वाज अ फाइट सीक्वेंस दैट वाज शॉट। अब ये फाइट सीक्वेंस शूट हो गया, लेकिन भाई एक्टर्स ये भूल गए, जैसे कि चंकी पांडे, अनिल कपूर एंड ऑल ऑफ देम, कि उन्होंने ना मेकअप नहीं उतारा। रात का समय था, ये गाना शूट हो रहा था, गाड़ी में उन्हें इतनी भूख लगी कि पास के एक होटल में चले गए। होटल वाले देख करके घबरा गए कि ये क्या खून से लदे पदे, एकदम खून ही खून हर जगह दिख रहा है, ये लोग कौन आए हैं। तो जो वेटर था वो इतना घबराया, उसने एम्बुलेंस बुला ली कि भाई इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और जो मैनेजर था उसने तो पुलिस को बुला लिया कि हाँ कोई ऐसा वैसा केस तो नहीं है। बाद में उनको बताया गया कि अरे भाई हमने मेकअप रिमूव नहीं किया है, हम सीधे सेट से आ रहे हैं। अब इस गाने की बात हुई है तो ये गाना थोड़ी देर में सुनाती हूँ। मजा आता है मुझे आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में। कम राइट बैक, दिस इज श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो मिर्ची.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

दो फिल्में अनाउंस तो हुई लेकिन वो कभी भी बनी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, शायद ये तरीका था टीनू आनंद का डिंपल कपाटिया को ट्रिक करने का। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड शहनशाह फिल्म की बात हो रही है जिसपे अमिताभ बच्चन थे। इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म की कहानी लिखने वाली थी जया बच्चन जी। अमिताभ बच्चन एक अरसे के बाद इंडस्ट्री में वापस आ रहे थे, पॉलिटिक्स उन्होंने तब ज्वाइन कर लिया था और इसीलिए वो फिल्में कर नहीं रहे थे। बट फाइनली पॉलिटिक्स को टाटा बाय बाय कह करके, यू टर्न मार करके फिल्में करने जब वो वापस आए तो शहनशाह वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसका ऑफर उन्हें मिला था। अब ऐसे में डिंपल कपाटिया के पास ऑलरेडी ऑफर जा चुका था, उनके पास साइनिंग अमाउंट जा चुका था टू प्ले द लीड इन दिस कैरेक्टर, एज इन टू प्ले द लीड फीमेल। फिर क्या हुआ, मीनाक्षी शेषाद्री को रातों रात उनके जगह पे रिप्लेस किया गया। अब टीनू आनंद जो ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे वो चाहते थे कि डिंपल कपाटिया अपना साइनिंग अमाउंट वापस दे, लेकिन डिंपल कपाटिया का कहना था कि मैं तो फिल्म छोड़ के नहीं जा रही हूँ, आपने मुझे रिप्लेस किया है तो मैं क्यों वापस करूँ। ये कॉन्ट्रोवर्सी उस टाइम की फिल्म मैगजीन्स ने जम करके छापी थी। सो टीनू आनंद ने एक कंडीशन रखी, ही सेड कि अगर वो उनका साइनिंग अमाउंट वापस कर देंगी तो वो अगले ही दिन अमिताभ बच्चन के साथ दो और फिल्में विद डिंपल कपाटिया अनाउंस करेंगे। अब डिंपल ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद बच्चन साहब, उनके लिए ये इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर था कि उन्होंने हाँ कहा, पैसे वापस दिए और अगले दिन टीनू आनंद ने दो फिल्में अनाउंस भी करी। ये जो दो फिल्में थी उनका नाम था महाकाल और एक का नाम था आलीशान, पर ये दोनों फिल्में कभी बनी नहीं। इसीलिए डिंपल ऑलवेज फेल्ट कि टीनू आनंद ने चीटिंग की, जो कि एक्चुअली में की। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
1: तो सविता बोल रही हूँ।
2: डॉक्टर ये तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
1: क्या परेशानी है?
2: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
1: तो वो तो भरता ही है।
2: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
1: अच्छा,
2: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
1: हाँ हाँ।
2: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
1: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
2: प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
1: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
2: नहीं,
1: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
2: मैं नंबर मेरा एक कजन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
1: अच्छा।
2: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
1: अच्छा, कभी लेकिन ना, मैं समझ रही हूँ।
2: हाँ, क्या समझ रही
1: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
2: डॉक्टर सविता।
1: हाँ जी,
3: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही देखा मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
1: मुर्गा। अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
3: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
1: कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
8: नहीं बेटी, के लिए justice चाहिए।
9: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
7: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Ahlawat and many others.
10: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
7: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
10: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
7: Released by Zee Studios nationwide.
11: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
12: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
13: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
14: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
13: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
15: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
16: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: तीन शहर और 17 दिन एक गाने को शूट करने में लग गए थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म तेजाब। वेल, इस फिल्म का सारा होमवर्क करके लाई हूँ मैं, और जब मैं रिसर्च कर रही थी ना तो मुझे पता चला कि ये वाला गाना, ये जो आप सुन रहे हो ना, दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग विच इज़ बाय नितिन मुकेश, क्या हमिंग है। वेल, ये गाना जो अलका याग्निक के साथ उन्होंने गाया, इस गाने को क्योंकि पूरा रात में शूट किया जा रहा था, हाँ, कि टीम बैठी हुई, एज इन द एक्टर्स बैठे हुए हैं गाड़ी में, और वो रातों रात एक गाड़ी में बैठ करके रास्ता कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने 3 सिटीज़ को क्रॉस किया था और 17 रातें लगी थी टू शूट दिस आइकॉनिक सॉन्ग।
1: सो गया है रास्ता।
0: आई नो, मुझे पता है कि आपको ये गाना पूरा सुनना, तो ये लो पूरा, कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: दिस अक्टूबर विटनेस द पीक ऑफ एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, अ प्रीमियर कम्युनिटी सेलिब्रेशन विद आर्टिस्ट्स लाइक जयश्री, स्पर्श शाह, नीनी आयरिस एंड डांस अकेडमीज लाइक बॉली मूव्स, शिवालिक, तारा आर्ट अकेडमी। एंजॉय फूड, गरबा एंड वन ऑफ अ काइंड फायरवर्क्स ऑन अक्टूबर 3rd एट कैनेडी पार्क, सेयरविल, फ्रॉम 3 to 9 PM। एंट्री एंड पार्किंग इज फ्री।
6: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
7: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
5: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट my3usa.org।
8: नवरात एक स्पिरिट
9: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथी लावी रहा छे पिस्काटवे मा।
8: रमो गरबा डेली 11 to 19 October सांजे 7 PM थी।
9: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ, 19 9 यज्ञ अने 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट gayatricenter.org टुडे।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Listener mein back to back gana sunega.
13: Back to back gana sunega.
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: Ah, ah,
0: ah, आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिल्म फेयर में ये कैटेगरी इस गाने के बाद शुरू हुई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म तेजाब। वेल, ये जो गाना था, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और इसमें एक्ट्रेस का जो डांस मूव्स थे वो एवरीबडी वाज कॉपिंग इन द एंटायर कंट्री, वो इतनी पॉपुलर हुई कि फिल्म फेयर की कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई इस कैटेगरी का अवार्ड भी होना चाहिए हमारे पास। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सरोज खान। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तेजाब मूवी का ये गाना, और माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस ओहो चुम्मेश्वरी था। वेल, आफ्टर दिस सॉन्ग बिकेम सो ह्यूज एंड इट गॉट सो पॉपुलर कि उसके बाद फिल्म फेयर ने ये डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया, आफ्टर दिस सॉन्ग बिकेम सो ह्यूज एंड इट गॉट सो पॉपुलर कि उसके बाद फिल्म फेयर ने ये डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया

床边。

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
5: नहीं बेटे के लिए justice चाहिए।
6: मुझे justice नहीं, but

0: करना चाहिए।
1: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
2: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
1: The end we've been waiting for. Drishyam, the conclusion in cinema 2nd October.
2: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. आखिरी हिस्सा बाकी है।
1: रिलीजिंग नेशन वाइड बाय जी स्टूडियोज।
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

फिल्म फेयर में ये कैटेगरी इस गाने के बाद शुरू हुई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म तेजाब। वेल, ये जो गाना था, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और इसमें एक्ट्रेस का जो डांस मूव्स थे वो एवरीबडी वाज कॉपिंग इन द एंटायर कंट्री, वो इतनी पॉपुलर हुई कि फिल्म फेयर की कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई इस कैटेगरी का अवार्ड भी होना चाहिए हमारे पास। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सरोज खान। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तेजाब मूवी का ये गाना, और माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस ओहो चुम्मेश्वरी था। वेल, आफ्टर दिस सॉन्ग बिकेम सो ह्यूज एंड इट गॉट सो पॉपुलर कि उसके बाद फिल्म फेयर ने ये डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया कि ये कैटेगरी यानी बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी होना चाहिए। एंड देन ऑफकोर्स सरोज खान ये अवार्ड लेने वाली पहली कोरियोग्राफर बनी थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, यही वाला गाना सुनना है तो सुनाती हूँ ना। पक्का इस बार, पक्का प्रॉमिस, बस 3 गानों के उस पर। कम राइट बैक।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: कभी हमने नहीं

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

0: तुमसे अच्छा कौन है।
1: अच्छा, कभी कभी ना फिल्म इतनी एंग्रॉसिंग होती है, इतनी एंगेजिंग होती है कि समटाइम्स ना लोग बहुत ऑब्वियस से सवाल भी नहीं पूछते। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ आज तेजाब फिल्म की बात हो रही है। तो क्या हुआ, अगर आप तेजाब देखोगे ना तो ब्रेक के पहले तक बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें नाना पाटेकर का सीन है, एज इन नाना पाटेकर ने शॉट किए हैं वो सीन्स, आपको दिखेंगे कुछ एकदम वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट सीन्स। लेकिन ब्रेक के बाद सडनली नाना पाटेकर का कैरेक्टर ही गायब हो जाता है। लेकिन फिल्म इतनी इतनी मज़ेदार थी, इतनी अच्छी थी, बॉलीवुड का सारा तड़का उसमें लगा हुआ था कि लोगों ने यह सवाल किया ही नहीं कि अरे भाई नाना पाटेकर का हुआ क्या। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
1: बीप। अरे बोल कौन रहा है?
3: अरे बोल कौन रहा है
2: सर, ये वाला भेज दें बीप।
1: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
1: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
2: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
1: अरे बावले हो गए हो क्या?
3: अरे बावले हो गए हो क्या?
2: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
1: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
2: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
1: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
2: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
1: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
2: सर ये वाला ठीक है बीप।
1: अबे पागल ले ले, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
2: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
1: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
2: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
1: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
3: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
2: सेंट सर, ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
1: अरे भाई किसको भेज दिया?
2: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
1: अबे ओ पागल ये क्या कर रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
7: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
6: Wait, they can see us on Sunday?
7: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: Nine Nights One Divine Spirit.
9: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
8: Join daily Garba October 11th to 19th at 7 p.m.
9: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharad Purnima Garba on the 25th.
8: Gather with family and experience the divinity. Visit gayatricenter.org.
10: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
11: नहीं बेटे के लिए justice चाहिए।
12: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
10: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
13: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
10: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
13: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा बाकी है।
10: Releasing nationwide by Zee Studios.
14: Batting तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
15: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
14: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है।
14: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है अनिल कपूर की तेजाब मूवी को लेकर के। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ 50 वीक्स तक, 50 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पे राज किया था इस फिल्म तेजाब ने। अब हुआ क्या, तेजाब जब बन रही थी अनिल कपूर के पास डेट्स ही नहीं थी, ही वॉज बुक फॉर 2 ईयर्स। अब ये जो फिल्म की कहानी थी ना, ये कहानी एन चंदर ने बोनी कपूर को सुना दी। बोनी कपूर जो कि अपने भाई को लॉन्च कर रहे थे, अपने भाई के लिए अच्छी फिल्में देख रहे थे, उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये फिल्म तगड़ी होने वाली है। सो उन्होंने अनिल कपूर से कहा कि भाई ये फिल्म कर लो, लेकिन अनिल कपूर ने कहा मेरे पास डेट्स ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये फिल्म। सो देन बोनी कपूर स्टेप्ड इन एंड ही टोल्ड डायरेक्टर एन चंदर कि एक काम करना, जिस भी दिन अनिल की कोई फिल्म की शूटिंग कैंसिल होगी वो दिन तेजाब का होगा। सो ऐसे करते करते अनिल कपूर के कई सारे शूट जो कैंसिल होते थे, अनिल कपूर चले जाते थे तेजाब के सेट पर। एंड दिस वॉज हाउ तेजाब वॉज मेड। इमेजिन, इतनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म, वो एक्चुअली में अनिल कपूर की, क्या बोलूँ मैं, वो कैंसिल डेट्स पे बनी थी। कभी कभी हमें नहीं पता होता ना कि हम किसी चीज़ के लिए जिसके लिए शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं वो काम करेगी, या फिर जिसको बहुत कैजुअली ले लिया वो काम करेगी। पुरानी जीन्स पे श्रेया है आपके साथ, कम राइट बैक।

0: apni jag.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
9: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
10: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
9: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.
16: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर.

अन्नू कपूर जी को अनिल कपूर का चेक मिल गया था पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज अन्नू कपूर का असली नाम अनिल कपूर था। वेल, मैं बात कर रही हूँ फिल्म तेजाब की, एंड अनिल कपूर इस फिल्म के मेन लीड में थे और अन्नू कपूर फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर थे। अब क्योंकि अन्नू कपूर का रियल नाम असली नाम अनिल कपूर था तो उनको ना अनिल कपूर का साइनिंग अमाउंट चेक पे मिल गया था। पहले तो उनको फिगर्स देख के यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, एंड देन ही रियलाइज कि ओहो, ये तो अनिल कपूर का चेक आ गया मेरे पास। वेल, आज तेजाब की बातें श्रेया के साथ चलती रहेंगी, कहीं मत जाना। गानों के उस पार फटाक से मिलो, आज तो हाईवे पे चलेंगे ना फिर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: ये मोह मोह के धागे।
4: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है।
5: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है।
6: BBSCA presents Monali Thakur Live, एक exquisite evening, a spectacular concert. October 10th, 7:30 PM, Plainfield High School Auditorium. Tickets on Sulekha and mongobashi.sca.org. Contact 650-305-5624.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab, mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.

फ्राइडे का मतलब है फिल्मी वीकेंड का ट्रेलर और मिर्ची सिद्दी के साथ मस्ती का सुपरहिट पिक्चर। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और फ्राइडे इवनिंग का फील ही ना अलग होता है, मतलब बॉस के ईमेल्स भी ना इतने हैवी नहीं लगते और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, आज रात क्या देखे। और बॉलीवुड का असली मजा ही इस वीकेंड पे है। ओटीटी पे फ्रेश ड्रॉप्स, थिएटर में बिग क्लैशेस और बॉक्स ऑफिस पे नए रिकॉर्ड्स, सब कुछ हैपनिंग है दोस्तों। और आपकी फिल्मी दोस्त मिर्ची सिद्दी लेकर आई है आज शाम का परफेक्ट एंटरटेनमेंट गाइड। तो मुझे बताइए कि फ्राइडे नाइट में आपका प्लान क्या है, थिएटर या टिकट या ओटीटी का रिमोट। डीएम मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और आपके लिए स्पेशल फ्राइडे पिक्स आने वाले हैं जल्द आफ्टर दिस सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
2: तो सविता बोल रही हूँ।
3: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
2: क्या परेशानी है?
3: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता
2: है। तो वो तो भरता ही है।
3: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
2: अच्छा,
3: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
2: हाँ हाँ।
3: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
2: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
3: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
2: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
3: नहीं,
2: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
3: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
2: अच्छा।
3: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
2: अच्छा, कभी लेकिन ना, मैं समझ रही हूँ।
3: हाँ, क्या समझ रही
2: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
3: डॉक्टर सविता।
2: हाँ जी,
4: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही
2: हूँ।
4: देखा, मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा।
2: अब नवीद आप बोलो आज कुकड़ू को।
4: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
2: कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
9: नहीं बेटे, के लिए justice चाहिए।
10: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
8: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Ahlawat and many others.
11: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
8: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion, in cinema 2nd October.
11: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
8: Released by Zee Studios Nationwide.
12: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
13: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
14: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
15: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
14: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
15: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
16: Inefficient,
17: very complex,
18: clumsy और
19: confusion ही confusion।
15: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं। Yes, you heard that right, you can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR, काम अनेक, software एक, Zoho One। Get your free trial at zoho.com/one।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
15: बेटा,
0: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
9: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
0: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
16: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
17: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

कैलेंडर तो अक्टूबर बोल रहा है, लेकिन न्यू जर्सी का वेदर कह रहा है कि समर एक लास्ट सीन और। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, टेम्परेचर mid-80s तक, मतलब यार अक्टूबर 2 को ना जैकेट लेकर निकले तो आफ्टरनून में उसे हाथ में लेकर घूमना पड़ा ही होगा। और मुझे ना ये फॉल का जो ट्रांजिशन है वही सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगता है, मतलब सुबह थोड़ी ऑटम वाली हवा, आफ्टरनून में समर का सरप्राइज एंड ट्रीज धीरे धीरे रंग बदलते हुए, और शाम को शॉवर्स का भी चांस है। मतलब यार एक ही दिन में ना न्यू जर्सी पूरा सीजनल कॉम्बो पैक दे रहा है, तो एंजॉय करिए इस बोनस वॉर्म्थ को। और मुझे ज़रूर बताइए क्या आप टीम समर के हो जो कहते हो कि यार समर थोड़ा और रुक जाओ, या टीम फॉल के हो जो स्वेटर चाय और कलरफुल लीव्स के लिए ऑलरेडी तैयार है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और वैसे तो वेदर अपनी प्लेलिस्ट शफल कर ही रहा है, लेकिन हम अपनी बॉलीवुड प्लेलिस्ट का अगला गाना यहीं पे सुनाते हैं, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
6: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
7: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
8: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
7: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
8: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
11: Hit down!
12: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
13: Sneakers, Kanjivaram Sari or Vahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
14: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
15: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
14: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
16: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
17: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
18: एक ही तारीख और भारत की हिस्ट्री के दो बहुत बड़े नाम, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, आज है अक्टूबर 2, यानी हम सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती और साथ ही में लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी। वैसे तो एक नाम के साथ अहिंसा और सत्याग्रह याद आता है, लेकिन दूसरे के साथ वो छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल फ्रेज जय जवान जय किसान याद आता है। वैसे मुझे इस डेट की एक बात बहुत ही खूबसूरत लगती है, लीडरशिप ना हमेशा एक जैसी नहीं लगती। किसी की स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस में नजर आती है तो किसी की सिंप्लिसिटी और पब्लिक सर्विस में। तो आज एक आसान सा सवाल कि आपके लिए एक ग्रेट लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है? करेज, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, एम्पथी या कुछ और? DM on Instagram RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और दोनों लीडर्स को याद करते हुए चलिए म्यूजिक में भी हिंदुस्तानी की खुशबू लेकर आते हैं। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Beta, shaadi next week hai aur tumhara abhi paise bhejta hu, sirf dialogue hi hai.
12: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
11: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
13: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज डाउन।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
0: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक, न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep ¡Navidad para la murga! ¡Michi Murga!
1: Hello?
2: Mr. Kumar?
1: Yeah?
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बताओ।
2: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: साढ़े चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊँ?
1: हाँ।
2: सर थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिया मेरे को?
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो 4:30 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर। सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे सर। कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर, मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे सर, संडे कितने बजे?
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे
2: सर। संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है वो, 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: This festive season, Kalal of New Jersey presents 2 mesmerizing nights.
6: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
5: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
9: 9 nights, 1 divine spirit.
10: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway.
9: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.
10: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th, and Sharat Purnima Garba on the 25th.
9: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
13: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
14: मेरी बेटी के लिए justice चाहिए।
15: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
13: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
14: Is baar khatra kab kaise aur kahan se aayega, batana mushkil hai.
13: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
14: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
13: Releasing nationwide by Zee Studios.
15: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
16: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
15: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
17: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
18: अब मिर्ची खा।
20: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
21: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
22: कभी कभी ना हम किसी चीज को मेरे तो ये बजट के बाहर है ऐसा कहकर ही शुरू होने से पहले ही फुल स्टॉप लगा देते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और फिर चाहे वेकेशन हो, नई कार हो या लाइफ का कोई बड़ा माइलस्टोन, पहले बड़ा नंबर दिखता है और हम कहते हैं कि यार रहने दो बाद में देख लेंगे। और दोस्तों घर खरीदने के ड्रीम के साथ भी ना कुछ ऐसा ही होता है। काफी सारे लोग डाउन पेमेंट का बड़ा नंबर देखकर पहले ही रुक जाते हैं, लेकिन पिक्चर में लो डाउन पेमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं और ऐसे में मॉर्गेज इंश्योरेंस जैसे ऑप्शंस किस तरह से इंक्लूड होते हैं इन्हें समझना भी जरूरी होता है। और इसीलिए इन्हीं सारे बातों के बारे में हमें और भी बताएंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
23: शुक्र करो शुक्रवार है भाई और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज, giving you final mortgage rate updates for the week. Is now a good time to buy a home? The answer really depends on your individual situation. When you're considering a home, there are several important factors to look at: your credit score, income, monthly debts, available savings, and how much you're comfortable paying each month. And remember, you don't always need to put 20% down payment. Depending on your situation, there may be different loan programs available, including options with lower down payments. So if buying a home is one of your goals, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home, Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 7.125%. 20-year fixed mortgage rate, 7%. 15-year fixed mortgage rate, 6.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Remember, listeners, Lion Mortgage has been helping the community for 20-plus years. We offer an array of loan products, whether it's conventional loan, DSCR loans, bank statement loans, P&L loans. We also have one-year buy-downs. You name it, and we have that program. We offer the most competitive rates in the industry. So once again, friends, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful weekend. Thank you very much. Bye-bye.
24: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlborough. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
8: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
9: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
8: Wait, they can see us on Sunday?
9: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
12: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
18: शाम शानदार, लेट्स डू नॉट डंकी, हैव अ फंकी टाइम।
19: अक्टूबर 2 है, मतलब पाव भाजी खा ली होगी, सत्संग भी अटेंड कर लिया होगा और बिल संभालने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और अगर बॉलीवुड फैन हो तो रेफरेंस समझ ही गए होंगे। जी हाँ, दृश्यम ने अक्टूबर 2 और अक्टूबर 3 ऐसा पॉप कल्चर में रजिस्टर कर दिया ना कि यार हर साल इस डेट पर विजय सालगांवकर ऑटोमेटिकली इंटरनेट पर वापस आ जाता है। और इस साल मेकर्स ने तो यार अल्टीमेट फुल सर्कल मोमेंट दिया है हम सबको विद दृश्यम 3, द कंक्लूजन जो रिलीज हो रहा है अक्टूबर 2 को। यानी अजय देवगन वापस विजय सालगांवकर, साथ में तब्बू एंड श्रिया सरन। और जिस कहानी में अक्टूबर 2 एक अनफॉरगेटेबल क्लू बना था, उसका कंक्लूडिंग चैप्टर भी अक्टूबर 2 को ही आ रहा है। तो इसको कहते हैं ना, कैलेंडर को भी स्क्रीन प्ले का पार्ट बना देना। तो दृश्यम फैंस, बिना स्पॉयलर के मुझे सिर्फ इतना बताओ कि विजय सालगांवकर का सबसे पावरफुल वेपन क्या था, उनकी प्लानिंग, उनका पेशेंस या उनकी फिल्मी नॉलेज? डीएम ऑन इंस्टाग्राम @RJMRGSiddhi, और इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होगी। फिलहाल हमारे पास नेक्स्ट क्लू है, नेक्स्ट गाने का, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
3: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
10: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
12: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
13: अगर मंथ्स का बैकग्राउंड स्कोर होता ना तो अक्टूबर का साउंड ट्रैक डेफिनेटली थोड़ा सिनेमैटिक होता। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मर्जी सिद्धी। और इमेजिन कीजिए कि यार पत्तों के कलर बदल रहे हैं हवा में, वो हल्का सा क्रिस्प फील, कॉफी शॉप्स में पम्पकिन स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस, सनसेट थोड़ा जल्दी और कार में एक परफेक्ट बॉलीवुड मेलोडी, तो बस सडनली राउट वन भी ना यश चोपड़ा के सेट जैसा लगता है। और मुझे लगता है कि यार हर सीजन का एक म्यूजिक मूड तो जरूर होता है, मतलब समर में ऐसे रोड ट्रिप वाले गाने, विंटर में कोजी मेलोडीज, और फॉल में वो गाने जो थोड़ा वार्म्थ, थोड़ा रोमांटिक और थोड़ी ड्रीमी फील होते हैं। तो आज बताइए कि आपका अक्टूबर का ऑफिशियल बॉलीवुड साउंड ट्रैक कौन सा गाना होना चाहिए। टेल मी ऑन इंस्टा आवर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और सिर्फ एक ही गाना चूज कर सकते हो। चलिए, लेकिन ये गाना मेरी तरफ से अक्टूबर साउंड ट्रैक में एंट्री मार रहा है, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की टाइम।
1: एक ऐसा फ्राइडे का प्लान जो कैलेंडर में कभी लिखा नहीं होता, बस शाम होते होते खुद ही बन जाता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऑफिस खत्म हुआ, कार स्टार्ट की और सडनली सवाल आता है कि सीधा घर जाए या कहीं और। फिर एक फोन कॉल आता है कि डिनर बाहर चले, दूसरा बोलता है कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, कोई कहता है कि बस ड्राइव पे चलते हैं, और कभी कभी ना वो वीकेंड वही अनप्लान्ड 2 घंटे पूरे वीकेंड का फेवरेट पार्ट बन जाता है। ना रिजर्वेशन, ना आइटिनरी, ना 15 पर्सनल व्हाट्सएप प्लानिंग कमेटी, बस खूबसूरत सा वेदर, फेवरेट लोग और गाड़ी में म्यूजिक। तो आज का मिर्ची एक्सपेरिमेंट है यार, अगर आपको भी एक स्पॉन्टेनियस फ्राइडे प्लान बनाना हो तो आप क्या चूज करोगे? डिनर, लॉन्ग ड्राइव, मूवी, डेजर्ट या सीधा घर? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर आंसर लॉन्ग ड्राइव है तो साउंड ट्रैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। तो चलिए वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला बॉलीवुड गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Nel Chile.
1: Iscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virpa, la burga.
2: हेलो
3: भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए, ठीक है? आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
2: बीप। अरे बोल कौन रहा है।
3: सर ये वाला भेज दें बीप।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: ये भेज दें सर बीप।
2: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
2: अरे बावले हो गए हो क्या।
3: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
2: अबे पागलों नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं
2: लास्ट। अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
2: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है,
0: मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: सर ये वाला ठीक है बीप।
2: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
0: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
2: अबे नहीं भेजना, एक बात समझ ले, तेरे में बुद्धि कम है।
0: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
3: सेंट। सर ये वाला गया सेंट, ठीक है सर।
2: अरे भाई किसको भेज दिया?
3: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
2: अबे ये क्या कर दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: ये मोह मोह के धागे।
8: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है।
9: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है।
10: BBSCA presents Monali Thakur Live, एक exquisite evening, a spectacular concert. October 10th, 7:30 PM, Plainfield High School Auditorium. Tickets on Sulekha and mongobashi.sca.org. Contact 650-305-5624.
11: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
12: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
13: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
14: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
13: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
14: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
15: This October, witness the peak of entertainment. Festival of Lights, a premier community celebration with artists like Jayashree, Sparsh Shah, Nini Iris, and dance academies like Molly Moves, Shivalik, Tara Art Academy. Enjoy food, garba, and one-of-a-kind fireworks on October 3rd at Kennedy Park, Sayreville, from 3 to 9 PM. Entry and parking is free.
16: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes, and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
17: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
18: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
19: October 24th and 25th, Hammerhold Upper Elementary School, East Brunswick, New Jersey. Register today at maitriusa.org.
20: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
21: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
20: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
22: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
23: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
22: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
24: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।

ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, न्यू जर्सी के लिविंग रूम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। शमशान द लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और वीकेंड ऑफिशियली अराइव कर चुका है, रिमोट लोकेट हो गया है, फैमिली ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो क्या देखने वाले। लेकिन स्नैक डिपार्टमेंट में एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई है। जी हाँ, मतलब नॉर्मली यार पॉपकॉर्न की न्यूज में ना ज्यादा सस्पेंस नहीं होता, पॉप करो बोल में डालो और डन। लेकिन इस बार स्टोरी में ट्विस्ट है, यानी हमारे इंडियन किचन का वो फेमिलियर गोल्डन इंग्रेडिएंट हल्दी अब पहुंच गया है पॉपकॉर्न्स तक। यस, टर्मरिक एंड पॉपकॉर्न आर टुगेदर, यानी फेमिलियर क्रंच के साथ एक कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड देसी फ्लेवर। और इस ब्रेकिंग स्नैक न्यूज के सेंटर में है दीप टर्मरिक पॉपकॉर्न, टर्मरिकली डिलीशियस। यानी अगली मूवी नाइट पर हेडलाइन खुद वेरीफाई कीजिए, आज ही ले आइए फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और अब स्नैक बुलेटिन कंप्लीट करते हैं, चलिए थोड़ी रियल हेडलाइन से ब्रेक लेते हैं और बॉलीवुड के सुरों में चलते हैं। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
3: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
2: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
5: शादी शॉपिंग का कम्प्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
7: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Beep cow, to jano.
8: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
9: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
10: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
8: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaideep Ahlawat and many others.
11: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
8: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion, in cinema 2nd October.
12: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है.
8: Released by Zee Studios nationwide.
13: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल. कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो. 26 प्लस डीआईवाई प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम. साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन. विजिट द क्राफ्टी हैंड्स .com और कॉल 732-397-0057.
14: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
15: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी.
16: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
16: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
17: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
16: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
18: Beta, shaadi next week hai aur tumhara abhi paise bhejta hu, sirf dialogue hi hai.
19: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में.
18: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
20: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
21: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
22: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
21: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
22: एक ही होता है.
21: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक, न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
23: बॉलीवुड में हीरो सिर्फ प्यार ही नहीं निभाता, जिम्मेदारी भी निभाता है. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और चाहे कभी खुशी कभी गम का राहुल हो, स्वदेश का मोहन, यार असली हीरो तो वही होता है जो अपनों के लिए हमेशा खड़ा रहे, कभी घर लौटकर तो कभी दूर रहकर भी हर जरूरत का ख्याल रख के. क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फोन कॉल से ही नहीं चलती, कभी कभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट की भी जरूरत होती है, और उस सपोर्ट का सबसे आसान तरीका होता है है घर पर पैसे जल्दी और बिना टेंशन के पहुंच जाना, और इसीलिए टैप टैप सेंड यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में भेजिए इंस्टेंट मनी ट्रांसफर्स, ग्रेट एक्सचेंज रेट्स और जीरो ट्रांसफर्स फी के साथ, यानी नो वेट एंड नो हैसल। डाउनलोड द टैप टैप सेंड ऐप टुडे, सेंड मोर एंड स्पेंड लेस। और अब एक गाना जो अपनों की याद हमेशा दिला ही देता है, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
8: दे सेल natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Wow, yehi to hai mera dream lehenga.
10: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
9: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Hislin.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हैरत से नहीं, एनर्जी से भर गया था ये ट्रैक, क्योंकि यार ये गाना फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी सुन के यार मूड ना एकदम ऑटो फ्रेश हो जाता था। लकी अली की वॉइस विशाल शेखर के बीट मैजिक क्रिएट कर देता था। और जी हाँ, हैरत वो गाना था जो रणबीर के जो बाइक राइड या कार राइड के सीन्स थे उन सबको भुलाकर अपने इनर ट्रैवलर को जगाने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर वेगस में ड्राइव कर रहे हो तो मन में हैरत गाना तो बजता ही था। तो चलिए आज इस गाने का टेम्पो फील करते हैं। गाड़ी फुल स्पीड में मत चलाना क्योंकि हम अभी भी न्यू जर्सी में हैं, लेकिन गाने का तो फील कर सकते हैं बॉस। तो चलिए सुनते हैं हैरत फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी Honest at RJ Mirchi Siddhi SIDDHI, or tab tak ke liye Harith right here on Mirchi, it's hot.

0: anytime.
1: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम की जिसका हर एक गाना यार हिट पे हिट था। और इस एल्बम का जो टाइटल ट्रैक था उसने यार सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि पूरे जनरेशन का मूड बना दिया था। जी हाँ, बात हो रही है अनजाना अनजानी की। और अनजाना अनजानी की जो कहानी है जो विशाल ददलानी और शिल्पा राव के डुएट में गाया गया था, जिसके लिरिक्स में ही ना वो एक वंडरलस्ट फील था कि कौन जाने कौन हूँ मैं, मतलब इंस्टेंट कनेक्ट था। और सबके लाइफ में जो ये अपनी जो भी अपनी राह ढूंढ रहे होते हैं ना, उनके लिए एकदम हिटिंग सॉन्ग था ये। वैसे गाना सुन के तो लगता था जैसे जिंदगी ना एक ट्रिप है, मतलब डेस्टिनेशन नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा ही गाना जर्नी वाला पसंद है तो मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम योर फेवरेट एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और फिलहाल बजाते हैं ये अनजान अनजानी का सुपर डुपर हिट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: ¡Cabana!
1: ¡Murga, murga! ¡La vida para la murga!
2: ¡Milchi, murga! ¡Acá!
3: ¿Aló?
4: Hola, doctor Smita, se va a
3: escribir.
4: ¿Doctor Smita, bol rí? Doctor, ya, doctor, कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था.
3: क्या परेशानी है?
4: ना एक तो यह डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता
3: है. तो वो तो भरता ही है.
4: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार.
3: अच्छा.
4: ये बुढ़ापे में हो गया ना. पानी पीता हूँ ना मैं जब भी.
3: हाँ हाँ.
4: तो मेरी प्यास बुझ जाती है.
3: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है.
4: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए.
3: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं.
4: नहीं,
3: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
4: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं. अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है.
3: अच्छा.
4: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है.
3: अच्छा, लेकिन मैं समझ रही हूँ.
4: हाँ, क्या समझ रही
3: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है. आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से. मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज. आप नावेद बाबा बोल रहे हैं?
4: डॉक्टर सुमिता.
3: हाँ जी,
5: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं. आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया. मैं भी सोच रही बेगात मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी. थोड़ा सा
3: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को.
5: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे. 1 2 3
3: कुकड़ू को.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है.
10: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस.
9: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F-1 स्टूडेंट वीजा. विजिट aimseducation.edu. योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स.
11: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए. गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स. RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
12: दिस अक्टूबर
13: विटनेस द पीक ऑफ एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, अ प्रीमियर कम्युनिटी सेलिब्रेशन विद आर्टिस्ट्स लाइक जयश्री, स्पर्श शाह, नीनी आयरिस एंड डांस अकेडमीज लाइक बॉली मूव्स, शिवालिक, तारा आर्ट अकेडमी. एंजॉय फूड, गरबा एंड वन ऑफ अ काइंड फायरवर्क्स ऑन अक्टूबर 3rd एट कैनेडी पार्क, सेयरविल, फ्रॉम 3 to 9 PM. एंट्री एंड पार्किंग इज फ्री.
14: नवरात एकत स्पिरिट
15: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
14: रमो गरबा डेली 11 to 19 October सांचे 7 PM थी.
15: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ, 19 9 यज्ञ अने 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी. विजिट gayatricenter.org टुडे.
16: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
17: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
16: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
17: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
18: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
19: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
18: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Listener mein back to back gana sunega.
16: Back to back gana sunega.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, 2010 में आई थी ये एल्बम अनजाना अनजानी, कंपोज बाय विशाल शेखर। और इसका एक ऐसा गाना आया था जिसमें यार मतलब दिल तोड़ दिया या फिर यादें छोड़ गई हो ना, बस वो गाना सुन लो हर फीलिंग डबल हो जाती थी। मोहित चौहान की आवाज में और शेखर रवजियानी ने भी जो इमोशन दिया था इस ट्रैक में, ओहो किसी थेरेपी से ना कम नहीं था। क्योंकि इस गाने में सूफी टच भी था, मॉडर्न मेलेडी भी थी, जैसे कि दर्द और सुकून बिल्कुल एक साथ मिल गए हो। तो दोस्तों इतना प्यारा गाना इस एल्बम का। वैसे तो यार इस एल्बम के हर एक गाने अमेजिंग थे, तो आपको कौन सा गाना इस एल्बम का सबसे ज्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये जो ब्रेकअप रिकवरी वाला गाना है ना, सुन लेते हैं यार विशाल शेखर की कंपोजिशन राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
5: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट. कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर. कॉल 732-366-6777.
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
10: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
11: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
10: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा.
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
15: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम.
16: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज एक ऐसे एल्बम के बारे में बात हो रही है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है. जी हाँ, अनजाना अनजानी 2010 में रिलीज हुआ वो एल्बम. और आज की जो रिक्वेस्ट आई, सॉन्ग रिक्वेस्ट, दैट इज फॉर द सॉन्ग तुमसे ही तुमसे. और ये जो रिक्वेस्ट आई है, दैट इज फ्रॉम रिया, और जो कि रहती है एडिसन में. और रिया जी कहती है कि यार ये गाना जो तुमसे ही तुमसे गाना है, प्लीज सिद्धि जी बजा देना, क्योंकि ये मूड रोमांटिक है और वेदर भी रोमांटिक है, तो ऐसे माहौल में ये गाना तो बजना चाहिए. तो जी हाँ रिया जी, एब्सोल्युटली करेक्ट. दोस्तों वैसे क्या आपको 2010 का वक्त याद है, जब अनजाना अनजानी एल्बम ने सबको होपलेस रोमांटिक ही बना दिया था. मतलब विशाल शेखर का मैजिक चला था, और इतनी खूबसूरत सी आवाज है हर गाने में, विशाल की कहिए, शिल्पा राव की कहिए, रणबीर प्रियंका की केमिस्ट्री, ओ हो हो. मतलब तुमसे ही तुमसे एक बहुत ही सुंदर सा गाना है, जहाँ हर नोट लगता है जैसे दिल से निकला हो. जैसे लॉन्ग ड्राइव पे सनसेट के टाइम ये गाना बज जाए ना, तो बस दुनिया रुक जाए. और मुझे तो लगता है कि हर किसी के लाइफ में एक तुमसे ही तुमसे मोमेंट जरूर होता है, जहाँ सब कुछ एकदम ब्लर सा हो जाता है, और बस वो एक इंसान दिखता है जो दिल में है. तो बताइए आपका तुमसे ही तुमसे मोमेंट कब आया था? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम, आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI. या फिर इसी एल्बम का आपका फेवरेट गाना भी आप बता सकते हो. फिलहाल हम बजा रहे हैं तुमसे ही तुमसे, रिया जी के रिक्वेस्ट पर, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
3: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलिशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी.
4: October 24th and 25th, Hammerhold Upper Elementary School, East Brunswick, New Jersey. Register today at maitriusa.org.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: ये मोह मोह के धागे.
7: कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल को छू जाती है.
8: और जब वो आवाज हो मोनाली ठाकुर की, तो शाम कॉन्सर्ट से कहीं ज्यादा बन जाती है.
9: BBSCA presents Monali Thakur Live. Ek exquisite evening, a spectacular concert. October 10th, 7:30 PM, Plainfield High School Auditorium. Tickets on Sulekha and mongobashi.sca.org. Contact 650-305-5624.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है.
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक, न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
15: गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों. चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, सायोनारा टू यू गाइस. लेकिन आप कहीं ना जाइए, क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है. जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची. शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ.

0: वीकेंड का मूड ऑन है, फेस्टिव वाइब्स इन द एयर और पार्टी का वॉल्यूम ऑलरेडी फुल। हेलो एंड वेलकम टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मी मिर्ची और योंतिका, जहां म्यूजिक रुकता नहीं, एनर्जी थकती नहीं और हर बीट के साथ सेलिब्रेशन थोड़ा और लाउड हो जाता है। सो लेट्स बिगिन दिस पार्टी, हियर वी गो।
1: आंधी बन के आया हूं,